आकाशवाणी भवानी पाटना समय वर्तमान प्रातः 5:57 47 आज गुरुवार 1948 शकाब्द आश्विन 23 दिन 2026 मसीहा अक्टोबर मासर 15 तारीख सर्व चैतन्य स्वरूपिणी मंगल दायिनी माँ दुर्गा श्री चरणारविंदे पवित्र पार्वण अवसर में समस्त श्रोताबंधु को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनई आरंभ करुचु आज प्रथम अधिवेशन कार्यक्रम आम केन्द्र प्रचारित होउछि मीडियम वेव्रे 248 मीटर तथा 1206 kHz जोगे FM 100.3 MHz एवं न्यूज अन एआईआर अप मध्यम आकाशवाणी भवानीपाटना केन्द्र मांगलिक

0: एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकोला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित भी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish P. Abraham. PM Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure,

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् अस्मिन् वर्षे आयोजितासु एशिया क्रीडायाः भारतीय क्रीडकदलस्य सदस्यैः सह संवादं विधास्यति। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री उपस्थितजनसमूहमपि सम्बोधयिष्यति। अवधेयं यत् जापानदेशस्य आइची नागोयानगरे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्। भारतेन आहत्य 85 पदकानि प्राप्तानि, येषु 21 स्वर्णपदकानि, 27 रजतपदकानि तथा 37 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 40,000+11,00,000 रेलकर्मचारिभ्यः 78 दिवसानां वेतन समतुल्यं PLB इति उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन धनम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् अस्य धनस्य वितरणाय प्रशासनेन 90,000,000,000,000+ राशि आवंटिता अस्ति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अस्माद् वर्षादारभ्य 5 वर्षपर्यन्तं राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य निरन्तरतायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। अस्य कार्यक्रमस्य कृते 28,000,453,000,00,000 व्ययः निर्धारितः अस्ति। अस्य राष्ट्रिय सामाजिक सहायता कार्यक्रमस्य नाम परिवर्त्य प्रधानमन्त्री सामाजिक सहायता योजना इति कृतमस्ति। श्रीवैष्णवः दिव्याङ्ग पेंशन योजना इत्येताम् आलक्ष्य अवदत् यत्
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27,00,000 दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: कृषि कृषक कल्याण विभागः अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य महिला कृषक दिवसस्य राष्ट्रिय स्तरीयं कार्यक्रमस्य आयोजनं करिष्यति। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं भारतीय कृषिक्षेत्रे महिलानां योगदानस्य सम्मानः अस्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी चेत्येतेषु स्थलेषु अतिवृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा नारंगवर्णपरा संचेतना प्रकाशिता। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ हैदराबादे आयोजितायां चतुर्थायां 20-प्रति20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 24 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: समय बर्तमान सकाळ 7:00। परवर्ती कार्यक्रम प्रचार करिबा पूर्वरु श्रोताबंधु कहि रखुछु, आज आम केन्द्ररु प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्करे सकाळ 7:25 प्रचार करिबु ओडियारे आलोचना इतिहास पृष्ठरे माँ माणिकेश्वरी ओ तांक गुरुत्व, आलोचक उमाशंकर कर, चासर कथा शुणिबे सकाळ 7:40। सकाळ 7:45 प्रचार करिबु गीत गीतांजलि रे केतोटी भक्ति गीत शिल्पी पिनाकी नायक। राज्यस्तरीय प्रसारण रे पीठ परिक्रमा रिले करी प्रचार करिबु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु सकाळ 8:30। एथिरे शुणिबे आकाशवाणी जुरंदा केन्द्र द्वारा प्रस्तुति माँ हिंगुला देवी, प्रयोजना भागीरथी मिश्र। सकाळ 8:45 प्रचार करिबु कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकृत महाकाव्य वैदेश विलासर संगीतात्मक परिवेषण। सकाळ 9:00 प्रचार करिबु ओडिया कथाचित्रर गीत। भारतर मान्यवर प्रधानमंत्री श्री

0: ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ରଖିଛି ସାଇତି।
1: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
2: नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नूआदिल्ली में एशिय क्रीड़ा 2026 रे अंशग्रहण करथिबा भारतीय क्रीड़ाविद मानंक सह वार्तालाप करिबे। एहि अवसर से उपस्थित जनता को मध्य संबोधित करिबे। जापान आईची नागोया ठारे अनुष्ठित एशिय क्रीड़ा रे भारत 21 स्वर्ण 27 रौप्य और 37 कांस्य पदक जीति तालिकार चतुर्थ स्थान अधिकार करथिला। एशिय क्रीड़ा रे श्रेष्ठ पांचटी देश मध्यरे भारत क्रमागत पई द्वितीय थर एहि स्थान हासिल करिछि। राज्यर विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आज छात्र संसद निर्वाचन पर भोट ग्रहण अनुष्ठित हो सकाळ 8:00 अपराह्न 2:00 पर्यंत मतदान होबा परे भोट गणना करा जाई फलाफल घोषणा करा जिवो। उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज

0: ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ପରେ ଶୁଣିବେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅବସରରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୀଠ ପରିକ୍ରମା ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु

0: भू जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाहनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटका और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में

0: पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
1: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
2: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
3: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
4: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों GFS प्राइड और GFS गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।

0: और कोलंबिया ने कल यरूशलेम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
2: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत का रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: श्रोता बंधु आकाशवाणी कटकर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारण समय रे किछि परिवर्तन करा जायछि
1: जहाकि अक्टोबर 4 तारिख रु कार्यकारी हेबो जेपरिकि आपनक अति प्रिय कार्यक्रम नाटक एवं गीतिनाट्य पूर्वाह्न 10टा परिवर्ते सुनी परिबे अपराह्न 3टा बाजि 30 मिनिट रे ओ चिरहरित अपराह्न 4टा बाजि 30 मिनिट रे
0: अन्य कार्यक्रम गुडीक मध्ये रे आपनक चिठी रविवार राति 8टा 15 मिनिट रे
1: गांधी चर्चा सुनी परिबे शुक्रवार सकाळ 9टा बाजि 45 मिनिट रे
0: एवं आमो आइन रविवार सकाळ 10टा 15 मिनिट रे
1: श्रोता बंधु एहा व्यतीत आपनक मनोरंजन पई किछि नुवा कार्यक्रम मध्ये शामिल करा जायछि सोमवार रु शुक्रवार प्रत्येक दिन 10टा रे सुनी परिबे शास्त्रीय ओ उपशास्त्रीय संगीतर कार्यक्रम
0: प्रत्येक दिन 10टा 30 मिनिट रु 80 दशक पूर्वर पुरुणा हिंदी चलचित्र संगीत
1: एवं प्रत्येक दिन अपराह्न 2टा बाजि 45 मिनिट रे पुरुणा ओडिया कथाचित्र गीत
0: श्रोता बंधु पुरुणा ओडिया चलचित्र उपरे आधारित विशेष कार्यक्रम स्मृति सुरभि सुनी परिबे प्रत्येक शनिवार दिन 10टा रे
1: आउ रविवार दिन 10टा रे साक्षात्कार भितिक कार्यक्रम अचिन्हा मुह अकुहा कथा
0: मने रखंतु श्रोता बंधु एही सब कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केन्द्र रु आपण माने सुनी परिबे अक्टोबर मास 4 तारिख रु
2: ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୃତ ମହାକାବ୍ୟ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସର ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ପରିବେଷଣ ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଜେନା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ହେଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ତୃପ୍ତି ଦାସ ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରଜତ କୁମାର କରା

0: प्रारंभ। अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: पवित्र दशहरा भाईजीउती आ कुमार पूर्णिमा पालन अवसर रे 15 अक्टूबर रु 26 अक्टूबर पर्यंत उत्कलिका आणिछि हस्तांतरे 20% प्लस 10% ओ हस्तशिल्प रे 10% रो विशेष रिहाती। एई ऑफर उत्कलिका रा समस्त शाखा ओ www.utkalikaodisha.com रे उपलब्ध।
2: तांचेनचिंग का कंठरे पार्वती गीतटि आरती कथा चित्ररु शिवव्रत दासंक गीत रचना को संगीत रे सजेइछन्ते वासुदेव रथ कथा चित्र आरती।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी।
1: सदियों से भारत की पहचान खेती और किसानी से रही है। स्कूलों में हमें पढ़ाया गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है। स्वाधीनता के तुरंत बाद देश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 52% थी, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 17% के करीब ही रह गई है। बेशक जीडीपी में हिस्सेदारी खेती की कम है, लेकिन खेती किसानी पर आज भी देश की बड़ी आबादी करीब करीब 48% लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। राष्ट्र विकास में खेती किसानी के महत्व को इन आंकड़ों से मोटे तौर पर समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार भी इसे समझती है। यही वजह है कि 12 साल के अपने शासनकाल में मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाईं। खेती किसानी के विकास में केंद्र सरकार के योगदान और उसकी योजनाओं को लेकर आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा की श्रृंखला के तहत आज हम खेती किसानी पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है किसान से कृषि उद्यम तक, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह।

0: बंसल और हरवीर जी, आप दोनों का स्वागत है।
1: शुक्रिया मुंशी,
2: धन्यवाद।
0: आज सबसे पहला सवाल डॉक्टर बंसल आपसे, किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने में मोदी सरकार ने किन किन योजनाओं पर बहुत ठीक से फोकस किया और उसमें कितना वो कामयाब रहे हैं?
2: मैं आपको एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
0: जी
2: बता सकता हूं कि पिछले 10-12 साल में जो नई स्कीम्स आई हैं और जो बढ़ावा इस गवर्नमेंट ने दिया है, वो खास करके एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हमें बहुत प्रोत्साहित करते हुए किसानों के लिए नई नई किस्में बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और मुझे खुशी है कि पहले जैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर काम करते रहे हैं और अभी भी चल रहा है, लेकिन वहाँ रेगुलेशन के चलते हुए हम उतनी जो हमें प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। सिर्फ एक बीटी कॉटन को ही हम किसानों तक लेकर आ पाए कि जिससे हमारी पैदावार काफ़ी बढ़ गई थी, 14 मिलियन बेल से करीब 2002 में और 2015-16 तक 40 मिलियन बेल तक चली गई थी। लेकिन अब जीएम टेक्नोलॉजी के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। 2020 में इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज मिला है। और इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जीएम एक बहुत रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी ऐसा ही है, उसकी वजह से हमारी बीटी कॉटन के बाद कोई और दूसरी नई किस्म अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन जीनोम एडिटिंग को हमें एनकरेजमेंट मिला इतना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोसेफ्टी रेगुलेशन से इसको हमें एग्जम्पशन दे दिया। मार्च 2022 में ये हमें एग्जम्पशन मिला कि हम जो भी बायोसेफ्टी असेसमेंट की जरूरत पड़ती है जीनोम टेक्नोलॉजी में, वो साइंटिफिकली स्पीकिंग साइंस के द्वारा इस चीज़ को हमें एविडेंस दिया गया और साइंटिस्ट ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया, हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये प्रपोजल दिया कि इसमें बायोसेफ्टी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से करीब 2 साल में एक एग्जम्पशन जो होता है वो मार्च 30, 2022 को उसका एग्जम्पशन हमें मिल गया। तुरंत साइंटिस्ट लोगों को इतनी इससे एनकरेजमेंट मिला कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अगस्त 2022 में और उस प्रोजेक्ट के तहत मई 4, 2025 में हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हमने लॉन्च कर दी है। उसके साथ साथ उसको और आगे बढ़ाने के लिए बाकी सभी करीब 40 क्रॉप्स में इस टेक्नोलॉजी के द्वारा नई किस्में बनाने के लिए, जिसमें कि यील्ड भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप की बात करें या नाइट्रोजन या और वाटर यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, या फिर ज़्यादातर पल्सिस में और ऑयल सीड्स में जो हम ही अभी तक इतने हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं उनका काम और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। इस तरह से इस काम को हमें खूब बढ़ावा मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी प्रोडक्शन जो अभी 375 मिलियन टन के आसपास है, खास करके मैं ऑयल सीड्स और पल्सिस में हमें और मिलेट्स को भी साथ में लेकर इसमें बहुत हमें एनकरेजमेंट मिली है और हम चाहते हैं ये टेक्नोलॉजी और आगे हमारे देश में बढ़ जाएगी और सारे लोग इसमें दिन रात से हम काम कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, डॉक्टर बंसल ने तो बहुत ही एक तरह से गंभीर बात बताई और ये थोड़ा तकनीकी विषय है। जहाँ तक किसानों के हालात में जमीनी स्तर पर बदलाव की बात है, तो आप लंबे समय से कृषि पत्रकारिता करते रहे हैं, खेती किसानी पर आपकी गहरी नज़र रही है, मोदी सरकार की वो कौन योजनाएं रही जिन्होंने किसानों की जमीनी स्थिति को, जमीनी हालत को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है? हरवीर जी
1: देखिए, उमेश जी अगर हम देखें पिछले 12 साल को हम ध्यान से उस पर जाएं तो कई सारे ऐसे कदम हैं जो कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जिनका योगदान है और काफी चेंजेस एग्रीकल्चर में आए। उसमें अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट काम था वो था जो एग्रीकल्चर का जो ढांचागत जो सुविधाएं हैं जिसमें सिंचाई सबसे इम्पोर्टेंट है
0: जी,
1: तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई के ऊपर फोकस किया गया और उसके बाद उसमें अगला कोशिश की गई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मोर क्रॉप पर ड्रॉप करके
0: जी।
1: तो एक तो यह है कि जो हमारा कृषि का जो क्षेत्रफल था सिंचित, वो हम लोग करीब ओवरऑल जो हमारा कुल कृषि क्षेत्रफल है उसके करीब 45 से 50 के बीच में हम अटके हुए, 55% को भी शायद पार कर गए अगर आंकड़े हम लेटेस्ट देखेंगे तो ये एक इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा का मतलब होता है कि

0: किसान को उसकी फसल का एक एश्योरेंस मिलना, के आश्वासन मिलना कि उसकी फसल पैदा होगी और जब फसल को जरूरत होगी उसमें वो सिंचाई कर सकेगा। तो
1: जी
0: ये एक बड़ा कदम है कि हमने किस तरीके से जो निवेश के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को सिंचित क्षेत्रफल के रूप में तब्दील करने की जो प्रयास हुए हैं। और उसके दो भाग जी, उसका दूसरा पक्ष जैसे मैं कहूँ, एक तो जो पहले से लंबित योजनाएं थी सिंचाई की उनको पूरा किया गया,
1: जी
0: दूसरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, क्योंकि पानी का भी एक चैलेंज हमारे सामने है। और
1: बिल्कुल
0: इसका एक ये इसमें महत्वात्मक बदलाव होता है आमदनी में किसान की, और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव हुआ, एक तो ये मैं कहूँगा। दूसरे अगर हम जाएं कि किसान को फसल की एक सुरक्षा देना जो है उसको रिस्क जो इंसान कहते हैं, जो जोखिम को एक तरीके
1: कम
0: से
1: करना।
0: कम करना और उसमें मदद करना, उसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें हर साल करीब 15,000 करोड़, ज्यादा 17,000 करोड़ तक

0: और उसके दो भाग जी, उसका दूसरा पक्ष जैसे मैं कहूँ, एक तो जो पहले से लंबित योजनाएं थी सिंचाई की उनको पूरा किया गया,
1: जी
0: दूसरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, क्योंकि पानी का भी एक चैलेंज हमारे सामने है। और
1: बिल्कुल
0: इसका एक ये इसमें महात्मक बदलाव होता है आमदनी में किसान की, और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव हुआ, एक तो ये मैं कहूंगा। दूसरे अगर हम जाएं कि किसान को फसल की एक सुरक्षा देना जो है उसको, रिस्क जो इंसान कहते हैं, जो जोखिम को एक तरीके
1: कम
0: से
1: करना।
0: कम करना और उसमें मदद करना, उसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें हर साल करीब 15,000 करोड़, ज्यादा 17,000 करोड़ तक जो है सरकार देती है उसमें जो प्रीमियम का हिस्सेदारी, और
1: जी
0: उसमें सब किसानों को शामिल किया गया। पहले क्या था कि जो कर्जदार किसान होते थे वो होते थे, इसमें फिर सबके लिए ओपन किया और इसको ऑप्शन बना दिया गया। तो ये एक इवोल्विंग स्कीम है, उसमें अभी बहुत सारे बदलाव लगातार किए गए, जो क्रॉप वैल्यू और किस तरह से भुगतान हो और सैटेलाइट मैपिंग और लॉसेस के वो कैसे कम किया जाए, तो ये एक बड़ा इसमें, ये दूसरा मेरा ये मानना है कि इसमें एक बड़ा काम हुआ। इसके अलावा अगर हम हैं जो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मैं
1: जी
0: कहूंगा 2019 में शुरू किया गया, तीन
1: हाँ
0: किस्तों में जो किसानों को, देश भर के जो एलिजिबल फार्मर है जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को उनके खाते में सीधे तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसका मकसद ये था कि जो छोटे किसान हैं उनको हम किस तरीके से आर्थिक मदद कर सकते हैं उस वक्त जब उनको जरूरत हो इनपुट की, कि
1: जी
0: उनके पास खाद की खरीदने की क्षमता हो, उनके पास बीज खरीदने की क्षमता हो। ये छोटा है बट ये एक अहम भूमिका उसकी है। और इसके अलावा मैं अभी अगर आपको बताऊंगा और कई चीजें हम आगे बात करेंगे,
1: हाँ,
0: ये
1: जैसे किसान
0: तीन बड़े कदम जो है। हाँ, एक और इसमें मैं कहूंगा आपको कि
1: क्रेडिट कार्ड
0: जो
1: जो था।
0: किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि ये 2003 के आसपास शुरू किया गया था, उसमें किसानों को जो छोटी अवधि का ऋण जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो मिलता है, खासतौर से उसका मकसद भी फसल के जो उनके जो इनपुट होते हैं उसकी आपूर्ति में मदद करता है, और उसमें जो क्रेडिट की जो मतलब दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देती है कि 7% पर वो किसानों को देती है, और जो किसान समय पर भुगतान कर लेते हैं उनको अलग से 3% का और इंसेंटिव दिया जाता है। तो जो समय पर किसान लेकर के भुगतान कर देता है कर्ज का क्रेडिट कार्ड के तहत, उसका जो प्रभावी दर है वो 4% पे आ जाता है। तो ये कुछ चार ऐसे स्टेप्स जो है जिनकी हमने बात की वो एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर के गए हैं। दूसरे एक जो MSP की कैलकुलेशन का तरीका था जिसमें C2 की किसानों की मांग रही है वो तो नहीं हुआ है, लेकिन A2+FL जिसमें सभी लागतें थी और उन लागतों को जोड़ के जो लागत आती है उसके ऊपर फिर फार्मर को प्रॉफिट देने की प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया MSP तय करने में। तो ये मैं
1: जी
0: देखता हूँ कि ये जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो पड़ाव इन दिनों में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो बड़े कदम, बड़े फैसले, बड़ी योजनाएं लागू हुई हैं उनको हम इस तरह से देख सकते हैं।
1: सही कहा आपने कि ये चार प्रमुख योजनाएं हैं। हालांकि तो बहुत सारी योजनाएं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की कृषि से जुड़ी उपलब्धियों की चर्चा बिना पीएम किसान सम्मान की पूरी नहीं हो सकती। इस चर्चा में भी उसका बार बार जिक्र आया है। इस संदर्भ में 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन की याद आना स्वाभाविक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस समय उन्होंने जो कहा था, आइए उसे सुनते हैं।
2: साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी

0: की चिंता को कम कर दिया है।
1: डॉक्टर बंसल, जो बायोटेक किसान और बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है या नीम कोटेड यूरिया की, उसने किसानों की स्थिति को बदलने में और खेती में उपज को बढ़ावा देने में किस तरह से भूमिका निभाई है, और क्या इससे किसानों की जमीनी हालात बदलने में बड़ी मदद मिली है या अभी देर लगेगी?
2: नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई, मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी, और अभी ये जो आप बायोटेक किसान की जो बात कर रहे हैं, ये एक नई स्कीम है जो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू की, और ये बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये है कि इसमें एक साइंटिस्ट और किसान, वैज्ञानिक और किसान की पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि ये जो बायोटेक स्कीम है, बायोटेक किसान स्कीम, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे जितने अलग रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ये जो हमारे छोटे किसान भाई बहन हैं उनसे जोड़ देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल सकता है। और खास करके जो इसमें ज़्यादा तरह का जो काम हो रहा है वो ग्रास रूट लेवल पर जो चैलेंजेस हैं हमारे पानी को लेकर, सॉयल की स्ट्रक्चर या सॉयल को की हेल्थ को लेकर, या सीड या मार्केट की एक्सेस को लेकर जो इसमें जो चैलेंजेस हैं ग्रास रूट लेवल जो फार्मर्स इसको फेस करते हैं, उसके ऊपर इसमें ज़्यादा फोकस है, और इसको चलते हुए करीब 1,00,000 फार्मर्स को इसमें यील्ड इम्प्रूवमेंट जो डेमोंस्ट्रेशन वहाँ बायोटेक किसान के तहत लगाए गए हैं उसमें करीब 15% से 30% तक की बढ़ोतरी मिली है, तो 1,00,000 फार्मर्स को। और खुशी की बात यह है कि इसमें स्पेशली वीमेन फार्मर्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस है कि जो हमारी वीमेन फार्मर्स है उसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। और इसमें और प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी और चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसको किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी।
1: डॉक्टर साहब, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर भी रहे हैं, एक तरफ भारत इस तरह से तकनीकी क्रांति के जरिए तकनीक और खाद के, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के जरिए खेती कर रहा है, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने एक और योजना शुरू की है जो हम कहते हैं जिसे नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग का, जिसे हम लोग जीरो बजट भी खेती के नाम से जानते हैं। भारत में जीरो बजट खेती की बहुत चर्चा होती है, आजकल ऑर्गेनिक खेती के नाम से भी ये बहुत मशहूर हो चुकी है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी शुरू किया है, इसे भी मोदी सरकार की कृषि उपलब्धियों का एक सोपान माना जाता है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: भारत में खेती को टिकाऊ बनाने, मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर निर्भरता कम की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी थी। इसके लिए कुल 2,481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1,584 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 897 करोड़ रुपए है। प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों, पशुधन और खेती से जुड़ी पारंपरिक जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोबर और गौमूत्र, जीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक इनपुट तैयार किए जाते हैं। जीवामृत का इस्तेमाल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जबकि बीजामृत का उपयोग बीजों के उपचार में किया जा सकता है। इस पद्धति का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, खेती में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना और बाहर से खरीदी जाने वाली कृषि सामग्री पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद करना है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के जरिए जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण और व्यावहारिक जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। किसान इन स्थानों पर प्राकृतिक खेती के तरीके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि अपनी फसल तथा मिट्टी की जरूरत के अनुसार इन तरीकों को कैसे अपनाया जाए। इसके अलावा जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उपलब्ध में

0: मदद मिलेगी। कृषि सखियों और प्रशिक्षित किसान मार्गदर्शकों के जरिए भी किसानों को जानकारी और तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता 2 वर्षों तक देने का प्रावधान है। इस सहायता का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती से जुड़े गतिविधियों, सामग्री तैयार करने और जैव इनपुट संसाधन केंद्रों से सामग्री प्राप्त करने में किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय की अगस्त 2026 में जारी जानकारी के अनुसार मिशन के तहत 24,031 समूहों में 11,81,000 हेक्टेयर शामिल किया गया है। इससे 24,69,000 किसानों को लाभ पहुंचने की जानकारी दी गई है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मिशन में प्रावधान किए गए हैं। इनमें सरल प्रमाणन व्यवस्था और साझा ब्रांडिंग शामिल है। इन प्रयासों से उत्पादों की पहचान बनाने और किसानों को बाजार से जोड़ने में सहायता मिल सकती है। हालांकि प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए किसानों को सही प्रशिक्षण, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सलाह और उपज के लिए उचित बाजार मिलना जरूरी है। खेती के तरीके में बदलाव करते समय मिट्टी, मौसम और फसल की जरूरतों को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से खेती की ऐसी पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है जिनमें उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए।
1: ये दोनों परंपराएं एक साथ चल रही हैं, तो इन दोनों में तारतम्य कैसे बिठाया जा सकता है और किस तरह से ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
2: ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है और दोनों साथ साथ चल सकती हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां हम ये जो नेचुरल फार्मिंग है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे हमारे सिक्किम की अगर हम बात करें या हिमाचल में बहुत सी और स्टेट्स हैं उसकी, अगर हम बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं एरियाज हैं जिसकी हम जिसमें हम बात करें, लेकिन जहां हमें हाई प्रोडक्शन जोन जो हमारे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, एसटीपी है या और हमारे मध्य प्रदेश में है या और हमारे महाराष्ट्र गुजरात में है, वहां जो अगर हमें हाई प्रोडक्शन लेनी है तो मैं तो ये समझता हूं कि नेचुरल फार्मिंग एक अपने भारतवर्ष में कहीं जो अलग स्टेट्स में हो रही है और इन एरियाज में हम लोग जो नई तकनीक को हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि दोनों स्कीम्स का भारतवर्ष के अपने फार्मर्स को इसमें फायदा मिल सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह की हम प्रोडक्ट या वैरायटीज बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेचुरल फार्मिंग यही है कि जिसमें हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें या ना करें, तो हम ये भी एक तरह से रिसर्च चल रही है कि बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स को भी हम जितना ज़्यादा उसको यूज करें उससे सॉइल की स्ट्रक्चर इम्प्रूव होती है, सॉइल में कार्बन कंटेंट इम्प्रूव होता है, जो कि एक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ये भी एक हिस्सा है कि हम सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाएं, तो उसमें भी ये नई जो टेक्नोलॉजी है उससे फ़ायदा होगा। और जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीनोम एडिटिंग जो बात कर रहे हैं उसमें हम उसी तरह की क्रॉप्स को बनाना चाहते हैं जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज़ हो, कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो और कम से कम वाटर से या पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम बात करें, तो दोनों टेक्निक्स में मुझे लगता है कि हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और मुझे ये उम्मीद है कि प्रोत्साहन जो दिया गया है नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा है और समझना बहुत जरूरी भी है।
1: हरवीर जी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर आई थी, मोदी सरकार ने शपथ लिया था, तो उस समय उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। वह लक्ष्य क्या हासिल किया जा चुका है और वो किस तरह से हासिल किया गया है?
3: देखिए, ये जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो घोषणा थी
1: जी,
3: वो प्रधानमंत्री ने 2016 के आसपास की थी कि हम 5 साल में करेंगे, 2022 उसका लक्ष्य रखा गया था। उसके लिए एक अशोक दलवाई जी भारत सरकार में अधिकारी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सारी रिपोर्ट अपनी सबमिट की और इसी तरह से उसका कोई एग्जैक्टली कोई इवेल्यूएशन किस पैरामीटर के हिसाब से करेंगे ये अभी ऐसा तो संभव नहीं होता, क्योंकि तमाम किस्म की फसलें हैं, तमाम किसी के उत्पाद हैं। तो उसमें ये जरूर है कि जो 4.5% की दर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में हासिल की गई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। इसके पहले के जो दशक रहे हैं उनमें 4% से नीचे की ही जो विकास दर कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है उसमें हासिल की गई थी। तो ये एक बड़ा बूस्ट रहा है एग्रीकल्चर के लिए।

0: ग्रोथ का लंबे समय के बाद, क्योंकि इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी एवरेज जब 10 साल का निकालते हैं वो इससे थोड़ा नीचे ही था। जो नंबर्स अवेलेबल है भारत सरकार के कृषि उत्पादन और जीडीपी को लेकर के, तो
1: जी
0: ये तो बिल्कुल सही है कि तमाम सारे फसलों के दाम बढ़े हैं, जिसमें खास तौर से जो दालें हैं दलहन हैं उनके एमएसपी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। खाद्यान्नों के जो एमएसपी है वो भी तेजी से बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम सारे जो दाम है वो जब किसानों को मिलता है तो उनकी आमदनी में एक बड़ा बदलाव आया है। उसमें आईसीआर का जो आईआरआई संस्थान है उन्होंने एक स्टडी थी इसके बारे में, जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि किस तरीके से किसानों की आमदनी में लक्षित दिशा में बढ़ोतरी हुई।
1: डॉक्टर बंसल, मोदी सरकार की एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू NMEO, जिसमें तिलहन और दालों के जो फसल है उसकी प्रमोशन की बात होती है, उसको प्रमोशन करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो क्या इसमें भी कोई बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसर्च हो रहे हैं? क्या जीनोम बदलने की तैयारी हो रही है? क्योंकि भारत में खासतौर पर दलहन की कमी रहती है और भारत का एक पूरा हिस्सा जो है वो दलहन फसलों पर, तो इसमें दलहन की फसलों का बहुत ज़्यादा मांग रहती है, बहुत ज़्यादा उनकी खपत रहती है। तो भारत को हर साल दाल की आयात के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दाल का आयात करना पड़ता है, खासतौर पर ब्राज़ील और कनाडा जैसे देशों से। तो हमारे यहाँ दलहन की फसलों को उनके जीनोम को विकसित करने के लिए भी कोई काम हो रहा है क्या?
2: हाँ, दलहन की फसलों पर पूरा भारतवर्ष का जितने भी हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं आईसीआर में, खास करके जो हमारे एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, तो दलहन पर ही फोकस जो रिसर्च करता है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी जैसे IRI में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ भी पिजन पी पर जो अरहर दाल है उस पर बहुत तरह की रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी एरिया में चल रही है। लेकिन यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह की टेक्नोलॉजी है जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक होता है कि हम GM फसलें तैयार करते हैं जो BT कॉटन जैसे तैयार हुई, दूसरी जैसे मैंने जीनोम एडिटिंग की बात की जहां हम जीनोम में बदलाव करते हैं, खुद जो जो क्रॉप है उसी में हम बदलाव करते हैं। तो PGNP को लेकर जो हमारे यहाँ पॉड बोरर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कीड़ा खा जाता है और उससे प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए एक GM PGNP अरहर उसके जो जीनोम में बदलाव करके जिसमें एक बैक्टीरिया से उसमें जीन डाला है जैसे कि BT कॉटन में डाला गया था, और वो अभी हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में हमारा एक सिस्टम है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ बायोसेफ्टी रेगुलेशन के लिए वो काम आगे प्रोग्रेस हो रहा है। और इन द मीनवाइल जो हमारे बाकी जो पल्सेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब 1 टन पर हेक्टेयर है जो कि बहुत कम है, और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग, क्योंकि एरिया बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, जबकि एरिया बढ़ाने से हमारे यहाँ दलहन की प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दी है, नीति आयोग ने दलहन पर और तिलहन पर रिपोर्ट्स जारी की हैं स्पेशली पिछले साल ही, जिसमें ये बताया गया है कि हम 2030 तक किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को भी साथ लेते हुए क्लाइमेट चेंज वैराइटीज जो और हमारी एफिशिएंट वैराइटीज हाई यील्डिंग वैराइटीज खास करके दलहन और तिलहन दोनों में ही अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उसमें हम इनको 1 टन से आगे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया के 40 क्रॉप्स में हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट बना है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, जिसमें जीनोम बदलाव की बातचीत बराबर हो रही है, उसमें 40 क्रॉप्स में जो मेजर एम्फेसिस है वो दलहन पर है, तिलहन पर, दोनों पर है। तिलहन को साथ लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूँ कि हम लोग करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का एडिबल ऑयल हर साल इम्पोर्ट करते हैं
1: जी।
2: तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको चलते हुए हमने एक GM मस्टर्ड भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड भी बनाया है जिसकी प्रोडक्टिविटी 25-30% ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो हमारे यहाँ अभी रेगुलेटरी सिस्टम क्लियरेंस मिली है लेकिन अभी वो लीगल रिव्यू में है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसके इसको सपोर्ट कर रही है कि हम उसको जल्दी से जल्दी किसानों तक लेकर आएँ, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी का जब तक हम फ़ायदा नहीं लेंगे हम बहुत ज़्यादा आगे शायद बढ़ना मुश्किल होगा। तो मेरा एक ये भी एक पॉइंट रहेगा कि जबकि भारत की बहुत सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो कर रहे हैं, 500 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो किस्में तैयार हो चुकी हैं, जो हमें खेतों में जो हमारी बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स हो चुकी हैं, उनको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए अगर मौका मिलेगा तो फार्मर्स किसानों के लिए और देश के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ने के लिए, विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए बहुत फायदा।
1: केंद्र सरकार की कृषि उपलब्धियों में हाल ही में एक और योजना जुड़ी है, नमो ड्रोन दीदी। आइए सुनते हैं इसी योजना पर एक रिपोर्ट।

0: खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे किसानों को कृषि सेवाएं दे सके और अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाश सके। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 1261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराना है। इनका प्रमुख इस्तेमाल खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाना है। योजना के तहत चयनित स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए लागत का 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 8,00,000 रुपए है। शेष राशि की व्यवस्था के लिए पात्र समूहों के क्लस्टर स्तर के संघ कृषि अवसंरचना निधि के तहत ऋण ले सकते हैं। इस ऋण पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 3% ब्याज सहायता का प्रावधान भी है। ड्रोन उपलब्ध कराने के साथ इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चयनित समूह की एक सदस्य को ड्रोन पायलट का 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, ड्रोन चलाने का अभ्यास और छोटी मोटी मरम्मत तथा रख रखाव की जानकारी शामिल है। समूह की दूसरी सदस्य या परिवार के किसी सदस्य को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करने से खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय में करने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। किसानों को हर बार अपना ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होती। वे जरूरत के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूहों से किराए पर कृषि सेवाएं ले सकते हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण महिलाओं को तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ना है। महिला समूह ड्रोन के जरिए किसानों को सेवाएं देकर आय अर्जित कर सकते हैं। योजना को लागू करने में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग और प्रमुख उर्वरक कंपनियों की भूमिका है। इन संस्थाओं के बीच समन्वय के माध्यम से ड्रोन की उपलब्धता, प्रशिक्षण और कृषि सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि मंत्रालय की फरवरी 2026 में जारी जानकारी के अनुसार प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूहों को कुल 1,094 ड्रोन वितरित किए थे। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए गए थे। ड्रोन से मिलने वाले लाभ को बढ़ाने के लिए नियमित काम, उपकरणों का रखरखाव, परिवहन की सुविधा और किसानों को उचित लागत पर सेवाएं मिलना जरूरी है। महिला समूहों को पर्याप्त कृषि कार्य उपलब्ध होने से ड्रोन का उपयोग बढ़ाने और आय अर्जित करने में मदद मिल सकती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए कृषि में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को एक साथ बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराना और किसानों तक आधुनिक कृषि सेवाएं पहुँचाना है।
1: हरवीर जी, एक चीज और है कि जो प्रधानमंत्री ने श्री अन्न की बात की, मोटे अनाजों को एक तरह से हम लोगों ने जो कृषि क्रांति हुई है, हरित क्रांति जो हुई है, उसको भुला दिया था। और मोटे अनाजों के साथ एक बड़ी बात यह है कि उसमें कीटनाशक और रासायनिक खादों की जरूरत कम पड़ती है, पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। तो ये किस तरह से चेंज ला रहा है भारतीय कृषि की दशा को, दिशा को?
2: असल में ये बात सही है कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, जिनको हम पहले मोटे अनाज कहते थे, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया गया, जो हैं उसमें श्री अन्न जो है उनकी कैटेगरी ठीक से परिभाषित की गई और उनका एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। और ये न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब एक तरीके से ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, और इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस तरीके के जो उत्पाद हैं उनके मांग बढ़ी, उनका जो उनसे बनने वाले जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनकी संख्या बढ़ी, और इनके जो उगाने वाले लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये मार्जिनल लैंड्स जहाँ पर है, जहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर इस तरीके के ये खाद्यान्न जो है उनका उत्पादन होता रहा है। तो उन किसानों के लिए ये एक बड़ा मौका लेकर के आया है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा जो भोजन है उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और उसमें इस तरीके के जो अन्न हैं उनकी जो मात्रा है बढ़ी है, और उनको

0: लोगों का रुझान आया। ये इसलिए आया क्योंकि जिस तरीके से इनको बेहतर पोषक तत्वों के रूप में एक तरीके से पेश किया गया और कैंपेन चला गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर, तो उसका फायदा किसानों को मिला। आपकी बात सही है कि इस तरह के जो अन्न हैं उनमें, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा सिंचित क्षेत्र में नहीं होते, और उसमें जो उर्वरक हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनकी भी ज़रूरत कम पड़ती है और कीटनाशकों की लगभग ना के बराबर जरूरत होती है, उसमें इस्तेमाल ही नहीं होता ज़्यादातर मामलों में। तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है, और ये क्योंकि उससे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी घटती है। अगर जिसमें आप ज़्यादा उर्वरक और ज़्यादा रसायन इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी लागत भी कम रहती है।
1: अब समय चर्चा की इजाज़त नहीं दे रहा है। भारत की कृषि और किसानों की हालत बदलने की दिशा में मोदी सरकार की योजनाओं पर इस सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया मिश्र,
2: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବଲମା କଥାଚିତ୍ରରୁ ସମୀରଙ୍କ ଗୀତ ରଚନାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ନାଦିମ ଶ୍ରବଣ। ବେଦକଣ୍ଠରେ ଆଶା ଭୋସଲେ ଏବଂ ନିତିନ ମୁକେଶ। କଥାଚିତ୍ର ବଲମା।

0: ଶେଷ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ଏବଂ ପରିପରି ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ବୈଷ୍ଣବୀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। इसके साथ ही भंडार सीमा 1000 क्विंटल निर्धारित की है। ये इस वर्ष नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जमाखोरी को रोकने और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी भंडार मानदंडों में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत कोलकाता और इसके क्षेत्रों तथा असम के लिए भंडार सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि औसत खुदरा चीनी के मूल्य में अगस्त में अपने उच्चतम स्तर से 15% तक का कमी आई है। चीनी की कीमतों में कमी सरकार के चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसके सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के प्रभाव का असर है। थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से ये भी आग्रह किया गया है कि वे मिल से निकलने वाली चीनी की कीमतों में आई भारी गिरावट का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रहा है। केंद्रीय

0: ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 1500 महिला उद्यमी और कारीगर हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कामना की कि मातृत्व प्रेम और स्नेह की प्रतीक मां स्कंद माता का आशीर्वाद हर परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपनी असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग भारत को एक प्रमुख सामरिक शक्ति बनाने के लिए किया और राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखा। श्री शाह ने कहा कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम हमेशा एक आदर्श बने रहेंगे और युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य का जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर तो 223 रन ही बना सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. India finished fourth in the medals tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The National Payments Corporation of India, NPCI, has postponed the implementation of the merchant discount rate, MDR, on select person-to-merchant UPI transactions. Earlier, NPCI had announced that the rate would come into effect from today. The National Payments Corporation of India said that keeping in mind the festive season, MDR on select person-to-merchant UPI transactions will be implemented immediately post-Diwali. It said the date will be notified separately. All person-to-person UPI transactions will remain free regardless of amount. The MDR charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved a productivity link bonus PLB equivalent to 78 days wages for over 11,40,000 railway employees. Briefing media after the cabinet meeting, Information and Broadcasting Mr. Ashwini Vaishnav said government has allocated over 2009 crore rupees for this payout.
2: The cabinet today approved a productivity link bonus equivalent to 78 days wages for around 11,40,770 railway employees. The bonus is a Diwali gift for all railway employees who work tirelessly day and night to ensure the smooth functioning of the Indian railways. The total financial outlay for the bonus is approximately 2009 crore rupees.
3: 2009 crore rupees ka total bonus hai.
1: The maximum bonus amount payable per eligible employee is 17,951 rupees for the 78 days. Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved strategic restructuring of IDBI Bank. The government has constituted a committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures for addressing the concerns. Former member of Niti Aayog, Professor Ramesh Chand, will chair the committee. The constitution of the committee follows the decisions taken during a meeting of representatives of sugarcane farmers from Karnataka and Maharashtra with the Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and the Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

आसन दुई धरे जाणी नेबा स्वास्थ्य सम्बन्धीय सूचना। काकुड़ी खाइले शरीर रे जलीय अंश कमी न थाए, टमाटो खाइले हाड़ मजबूत होइथाए, जहनी खाइले आखिरी छुति बढ़ी थाए, जिम जीवा पूर्वर दुईटी कदळी खाइकी गले 90 मिनिट व्यायाम करिबा पई शक्ति मिले, जीरा खाइले रक्तहीनता समस्या दूर होइथाए, छोट गुजराती चुबाइले शारीरिक दुर्बलता दूर होइथाए, खाली पेटर पानी पीले चेहरे चमक आसी थाए, जदि से लेंबू रस और महु मिसाई पीबे तेबे स्वास्थ्य पाई बहुत लाभदायक होइथाए।

समस्तरे आम समस्ते बंधा तार गतिपथ सहित आम धावमान निर्धारित समय रे से आरंभ एवं शेष करिथाय अटकी जीवर प्रश्न नहीं। आमर यह विशेष कार्यक्रम खोला छरकार अवधि समय आसी जाइछि आग को आउ अग्रसर हेबार संभावना नहीं। कार्यक्रम को एठी रखा हेब हेले श्रोता बंधु ता पूर्व कार्यक्रम संपर्कित मतामत देवाई अनुरोध रहा आशा करुछु आपणक सुचिंतित मतामत कार्यक्रम सरस सुंदर एवं मनछुआ करिबारे सहायक हेब। आमको चिठी पठेबार ठिकणा कहिदे चिठी पाइछु कार्यक्रम मार्फत केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी भवानीपाटणा। चिठी लिखिबा व्यतीत आउ एक विकल्प पंथा आमर व्हाट्सएप नंबर एही नंबर।

पीएम किसान हिताधिकारी जरूरी सूचना योग्य चाषी निकट में सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेस को स्वच्छ और निर्भुल करने भारत सरकार आरंभ कर

0: कुछ नाउन से लोगों का सफर आसान हो।
1: और
2: 50
1: अध्याय
2: करोड़
1: जुड़ रहा
2: रुपए की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। नक्सलवाद की हर निशानी को समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई साझेदारियां और विकल्प तलाश रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हिली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद और फिनटेक बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने राज्यों को देश में डेटा सेंटरों के सतत विकास की योजना बनाने में मदद के लिए डेटा सेंटर इवोल्यूशन फ्रेमवर्क जारी किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया कि भारत का मीडिया मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से आज मुलाकात करेंगे और नागालैंड सरकार के युवा संसाधन तथा खेल विभाग को जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉट सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।
0: डेटा सेंटरों के सतत विकास की योजना बनाने में मदद के लिए डेटा सेंटर इवेल्यूशन फ्रेमवर्क जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हिली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद फिनटेक बैठकों और संबंधित IUKFP बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई में आयोजित CII बिग पिक्चर सम्मेलन में श्री कुमार ने बौद्धिक संपदा को मजबूत करने, सतत राजस्व सुनिश्चित करने, अनुशासित निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर दर्शकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री कुमार ने बताया कि वेब्स का अगला संस्करण अक्टूबर 2027 में मुंबई में आयोजित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 100 ग्राम पेड़ा दियंतु
1: 250 ग्राम थारु कम मिलिबो नाही
0: किंतु काहे की
1: मिनिमम ते नेबाकू पड़िबो ना
2: अरे भाई आज काली तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस मागंती नाही
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम
0: हां बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट अर्थ बीएसबीडी अकाउंट एथिरे मिनिमम बैलेंस नाही किंतु लाभ बहुत गुड़ाए एटीएम कम डेबिट कार्ड मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग पासबुक चेक बुक सब कुछ मिलिबो तहा मध्य कोनोसी देय बिना
1: दे भाई
4: आरबीआई कहूची बीएसबीडी अकाउंट मिनिमम बैलेंस नाही मैक्सिमम लाभ अछि
5: आपणकर 4800 रिवार्ड पॉइंट्स आज ही एक्सपायर हे जिवो एबे रिडीम करि नियंतु
6: अरे वाह मोर इत्ते पॉइंट्स केमिति आसला
7: बस इमथि पचारंतु व्हाई रिवार्ड पॉइंट रो नारे आसीथिबा कोनोसी अजणा लिंक रे क्लिक करबा पूर्वरु टिके भाबंतु गोटिए व्हाई आपणकु ठकेइरु बंचाई पारे सबुबेले पचारंतु WHY कहउछंती SBI रो कॅप्टन व्हाई आपणकर साइबर रक्षक
8: पीएम किसान हिताधिकारींक पई जरूरी सूचना योग्य चासिंग निकटरे सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेस को स्वच्छ और निर्भुल करिबा पई भारत सरकार आरंभ करुछंती एक स्वतंत्र अभियान अक्टोबर 2 रु 31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान पीएम किसान योजना रो आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पई एग्रीस्टाक पोर्टल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं EKYC करिबा बाध्यतामूलक एथिपाई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार
9: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर
10: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा
9: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001
10: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए

0: आकाशवाणी श्रेष्ठ माध्यम समस्तक सह संपर्क जोड़ीबा पई।
1: श्रोता बंधु आपण कार्यक्रम शुणिछन्ति आकाशवाणी भवानी पटना केन्द्ररु।
2: वीडियो लाइक करबा पई टंका मिलिबो।

0: So easy. फसिला
1: अडणा लिंक्स उपरे क्लिक करंतु नाही आरबीआई कहे
2: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु
3: पवित्र दशहरा भाईजीउती आ कुमार पूर्णिमा पालन अवसर रे 15 अक्टूबर रु 26 अक्टूबर पर्यंत उत्कळी काणीची हस्तांतरे 20% प्लस 10% ओ हस्तशिल्प रे 10% रो विशेष रिहाती एई ऑफर उत्कळिकार समस्त शाखा ओ www.utkalikaodisha.com रे उपलब्ध
4: आपणकर 4800 रिवार्ड पॉइंट्स आज ही एक्सपायर हे जीवो एबे रिडीम करि नियंतु
5: अरे वाह मोर इत्ते पॉइंट्स केमिति आसला
6: बस इमथि पचारंतु व्हाई रिवार्ड पॉइंट रो नारे आसीथिबा कोनोसी अजणा लिंक रे क्लिक करबा पूर्वरु टिके भाबंतु गोटिए व्हाई आपणकु ठकेइरु बंचाई पारे सबुबेले पचारंतु WHY कहउछंति SBI रो कॅप्टन व्हाई आपणकर साइबर रक्षक
7: आकाशवाणी भवन पटना वर्तमान सुनंतु महिला मानक पई उद्दिष्ट शक्ति रूपा कार्यक्रम ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଫୋନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଟକ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ

0: WHY आपणको ठकेइरु बंचाई पारे सबुबेले पचारंतु WHY कहउचंती SBI रो कॅप्टन Y आपणकर साइबर रक्षक
1: आकाशवाणी भवनी पटना वर्तमान शुणंतु महिला मानक पई उद्दिष्ट शक्ति रूप कार्यक्रम आज एथिरे शुणंतु सीधा प्रसारण रे फोन इन प्लीज कार्यक्रम एथि पई आमे नै जाउछु टॉक स्टुडियो को।

0: 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31 तीन 2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।

0: चौटाले ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013

0: कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
4: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920, 925, 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
3: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

0: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कटक परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे विज्ञापन पर
3: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
4: गांरु सहर जाए सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
4: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: गतानित्यं पद्माश्रित करद्वया सुभदास्तु सदादेवी स्कंदमाता जशस्विनी नवरात्रीर नौटी दिन में नवदुर्गा भिन्न भिन्न स्वरूप को पूजार्चना करा जाय थाए। आज पंचम दिन में पूजा पाउछंती मां स्कंदमाता। पुराण अनुसारे भगवान शिव और मां पार्वती पुत्र कार्तिकेयंकर अन्य नाम स्कंद। परम दयामयी मां स्कंदमाता स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी। मां चतुर्भुजा दुईट भुजरे पद्मफुल धारण करथिबा बेले अन्य एक हस्तरे पुत्र स्कंद और आउ एक हस्तरे भक्त को आशीर्वाद पद्म उपरे विराजित होइथिबारु मां को पद्मासना कहुए। मुखमंडल शांति, आखिरे करुणा और कोलरे शिशु कार्तिकेयं को धरी जहां मां ममता को सूचाई थाए। मां आराधना केवल सांसारिक सुख समृद्धि पाई नुहे बरं ज्ञान बेक और आध्यात्मिक उन्नतिर मार्ग प्रशस्त करिथाए। मां केवल शक्तिर आधार नुहंती, से संतानर सबुठु सुरक्षित आश्रय। मां स्कंदमाता समस्त जीवन में सुख शांति और समृद्धि आनीदिंतु एतिकी कामना। आकाशवाणी संवाद विभाग पक्षरु मु स्मृति रेखा तारणिया।
1: पुरी श्रीमंदिर सेवायत संप्रदाय नेत पिला एक स्वतंत्र पर्व भाव पालन कर शारदीय दुर्गापूजा अवसर में पंचमी षष्ठी और सप्तमी तिथि सेवायत कूलर कुमारी कन्या मैंने पारंपरिक बेश और स्वर्ण अलंकार से सज्जित हो मार्कंड पुष्करणी को आसी हर पार्वती पूजार्चना करते। एक दिन धरी बलिपूजा करुवा कन्या मैंने शेष किसी दिन पारंपरिक बेश से सज्जित होती। समय बली गीत गान करार परंपरा रही। पुरी श्रीमंदिर कार्यालय में अनुष्ठित छतीसा निजोग बैठक में कार्तिक मास रे महाप्रभु नीतिकांति बाळभोग सह अन्य प्रसंग रे आलोचना होईछि। ए संपर्क में सूचना दे जिलापाल दिव्यज्योति परिडा कहिछन्ति आसंता 22 तारिखरु नवेम्बर मास 20 तारिख पर्यंत भोर 4 द्वारफिटा जाए 5 मंगल आरती और सकाळ 6:30 साढ़े 7 मध्य राधा दामोदर बेश संपन्न हेबो। अन्यान्य नीति हेबा परे पूर्वाह्न 10:30 साढ़े 10 मध्य स्वतंत्र बाळधूप नीति करा जिवो। ए समय रे श्रद्धालु और हविष्यालिंक सुरक्षित दर्शन और महाप्रसाद उपलब्धता उपरे बैठक में गुरुत्व दिया जाइछि। आसंता नवेम्बर मास 16 तारिख में बड़ ठाकुर हरिहर बेश, 21 तारिख में पंचुकर प्रथम दिन में लक्ष्मीनारायण बेश, 22 तारिख में डाळिकिया, 23 तारिख में लक्ष्मी नृसिंह और 24 तारीख में राजाधिराज बेश अनुष्ठित हेब। तेबे द्वादशी तिथि क्षय होउथबारु चलित वर्ष प्रभु बांकचूड़ा बेश हेब नाही बोली प्रशासन पक्षरु कुहाजाइछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकारी मुख्य भाव 25 वर्षर जनसेवु राष्ट्रसेवा सेतु शिविर भद्रक जिला भंडारीपोखरी पंचायत समिति सम्मेलनी कक्षे अनुषित हो। सांसद अभिमन्यु सेठी कार्यक्रम में जोगदे विकसित भारत गठन पर संकल्प नेबा को परामर्श दे जनसाधारण 186 अभियोग ग्रहण करा। मालकानगिरी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पक्ष पुनर्वास सहायता योजना अधीन 7 योग्य प्रार्थी निजुक्ति पत्र प्रदान कर नवनिजुक्त कर्मचारी स्वच्छता समानुवर्तिता और कर्तव्यपरायणता को पाथेय कर जिलार शिक्षा व्यवस्थार प्रगति में योगदान दिग्दर्शन प्रदान कर। भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति तथा महान वैज्ञानिक और विशिष्ट शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज जयंती अवसर में श्रद्धांजलि अर्पण कर। भारतर प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण जान आरंभ कर मिसाइल कार्यक्रम और पोखरण परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम गुरुत्वपूर्ण अवदान रही। उत्तम स्वास्थ्य पर हाथ धुआर गुरुत्व संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज विश्व हाथ धुआ दिवस पालन कर। लोकों मध्य हाथ धोवा अभ्यास उन्नति आने दिवस उत्साहित कर 2008 विश्व हाथ धुआ पार्टनरशिप पक्ष प्रथम यह दिवस पालन कर। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु देशर प्रत्यावर्तन करिथिबा भारतीय पाणिपाग विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछि। एथिसह आजिठारु उत्तर पूर्व मौसुमी वायु प्रवेश करिछि। अपरपक्षरे आंडामान सागर में सक्रिय घूर्णिबलय दुर्बल होइछि। यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होबार संभावना रही। आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबा नै 10 जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। मुख्य संवाद पुणि थरे एशिय क्रीडारे सफलता हासिल करिथिबा क्रीडाबित मानंक सह आज संध्यारे भाव विनिमय करिबे प्रधानमंत्री। राज्यर विभिन्न उच्च शिक्षानुष्ठान छात्र संसद निर्वाचन पर शेष होला भोट ग्रहण अपराह्नरे प्रकाश पाइब फलाफल। नवरात्रीर पंचम दिवस में आज पूजा पाउछन्ती शांति साहस और संपूर्णर प्रतीक देवी स्कंदमाता। एवं देशर अवशिष्ट अंचल प्रत्यावर्तन कला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। आंचलिक संवाद बर्तमान पर शेष होगा।

0: पीएम किसान हिताधिकारीको पाई जरूरी सूचना योग्य चासिंग को निकटरे सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेस को स्वच्छ और निर्भुल करिबा पाई भारत सरकार आरंभ करुछंती एक स्वतंत्र अभियान अक्टोबर 2-31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भावे पाइबा पाई एग्रीस्टाक पोर्टाल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक एथिपाई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार।
1: एथर शिल्पी हेले शिखर रवजियान, सलीम मर्चेंट एवं नीति मोहन अमृता दत्तों गीत रचना को संगीत सजाई विशाल शेखर कथाचित्र स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं के वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं।

0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्षों में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए उन्हें कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। पंजाब में मंगलवार को मानसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की दिन दहाड़े हुई हत्या और राज्य में मादक पदार्थों के विरोध में हो रहे बंद को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्य के कई हिस्सों में बाजार बंद हैं। चंडीगढ़ और मोहाली सहित पंचकुला से जुड़ने वाली कई मुख्य और आंतरिक सड़कें अवरुद्ध हैं। पुलिस ने कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
1: कई राजनीतिक पार्टियों, किसान यूनियनों और व्यापारियों के संगठनों ने बंद के आह्वान को समर्थन दिया है। यह बंद मारे गए नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह के पिता भीम सिंह की अपील पर किया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस और दूसरे इमरजेंसी गाड़ियों को जाने दे रहे हैं। इस मामले में न्याय की मांग के लिए बनाई गई एक्शन कमेटी ने लोगों से बंद के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। अभी तक राज्य में कहीं से भी किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। बंद सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि आयुर्वेद को वैज्ञानिक अनुसंधान, साक्ष्य आधारित प्रमाणीकरण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़कर सशक्त किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 3रे अंतर्राष्ट्रीय कौमार भृत्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा।

टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ CIT NCERT की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। वॉट ए कोइंसिडेंस इट इज दैट आई रेड दिस पोएम इन माई चाइल्डहुड इन द टेक्स्ट बुक एंड गॉट इट लिसन टू इट इन अ म्यूजिकल फॉर्म। आई लाइक दिस पोएम एंड सॉन्ग वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी, यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और USB कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया,
ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे

0: कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी, अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डोब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर

0: इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
1: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
0: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो सात की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
0: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
1: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
0: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
1: नहीं मैंने तो आम नहीं खाया।
0: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
3: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
0: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
1: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
0: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
4: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
5: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज पत्ती फूल और फल इनके आने की सही तरतीब क्या है, आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
7: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
8: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
9: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना

0: Vídeo massa aqui.
1: Vídeo aqui.
2: Jay.
1: Vídeo aqui.
2: Jay. Jay Jirapur, Jay Bharat.
3: राजा जोरावर सिंह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
6: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
6: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे
5: जी। महाराज महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
6: बिल्कुल,
5: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
6: जी मंत्री जी।
5: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
7: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह।
8: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
6: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
8: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
6: देखिए निजाम साहब।
8: जी फरमाइए।
6: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
8: जी।
6: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
8: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
6: जी।
8: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
9: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहां के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद

0: ताकत का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
1: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।

0: जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: सुनु दिले सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग रो 1394 तम भाग आकाशवाणी भवानी पटना।
6: तेबे आरंभ करिबा इन्वेस्टिंग रा

0: जागरूकता प्रारंभ अधिक सूचना पाई सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट को विजिट करंतु किंबा सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करंतु।
1: अपा देखो
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: देखा वाह मोर फेवरेट कलर
3: सब बेले शॉपिंग।
1: आई नो मा खर्च करिबार बयस एटा राइट
4: सेविंग करिबार भी बयस एटा।
5: आई नो बापा सेव कर उचित जगार निवेश कर मूलधन उपरे सुध मिलिबो जहाक पुणी थरे विनियोग कले सुध मिलि चालिथिबो।
6: आई नो ना
5: आरबीआई कहे
7: कर सटीक आरंभ हुओ फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: दस लक्ष लॉटरी मते वाओ
5: फसला नकली ऑफर्स प्रति सावधान
7: आरबीआई कहे
8: सचेतन हुंतु सतर्क रुहंतु।
9: प्रचार करछु कार्यक्रम जुबवाणी आज यही क्रम रहिछि विज्ञानिका

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय वायुसेना नौसेना के लिए टॉर्पीडो वर्णास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा

संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमेरिका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

परस्परं लाभप्रदा भविष्यति। मोदी सर्वकारस्य एआई प्रयासस्य च तेन महती प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन श्वः कर्णाटक केरल राज्ययोः प्रवासे यास्यति। अमेरिकायाः लॉस वेगास नगरे समायोजितायां अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगितायां भारतीय मल्लेन विश्वजित रामचंद्र मोरे इत्यनेन ग्रीपको रोमन वर्गस्य अंतिम प्रतिस्पर्धायां रजत पदकं विजित्य नूतनः इतिहासः रचितः। इति वार्ताः।

0: नई उड़ान दी है। हम सब जानते हैं स्पेस सेक्टर का कितना विस्तार हो रहा है। ये कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मरीन मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, वेदर प्रिडिक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का आधार बन चुका है।
1: नवरात्रि पांच नंबर दिन आज भिन भिन शक्तिपीठ मानके रीतिनीति थी पूजा कराजिबार सहित माँकर स्कंदमाता बेश हेउछि। श्रद्धालु माने भक्ति और श्रद्धार सहित माँकर उपासना करुछन। पुराण अनुसारे भगवान शिव और माता पार्वती पुओ कार्तिकेयर आउ गोटे ना है स्कंद। परम दयामयी माता स्कंदमाता स्वरूप बहुत कल्याणकारी आए। माँ चतुर्भुजा दुईटा भुज थी पदम फूल आउ गोटे हाते पुओ स्कंद आउ गोटे हाते भक्तों आशीर्वाद देसन। पदम उपरे बसिथिबानु माँकु पद्मासना कुहाजायसी। माँकर मुहे शांति आखिन करुणा आउ कोलन पुओ कार्तिकेय जेन्टा माँकर ममताके सुचासी। वज्रपातर मुकाबिला आउ एथिर नुकसान कम करबा लागि ओडिशा राज्य विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष अहर उद्यम करुछन् बोली राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी कहिछन्। भुवनेश्वर आज ओडिशा राज्य विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष ओस्डमा तर्फ दुईदिनिया जातीय वज्रपात सुरक्षा कर्मशाला के उद्घाटन करिकरि मंत्री इटा कहिछन्। कर्मशाला देश ना करा वैज्ञानिक आउ वैषयिक अनुष्ठान विश्वविद्यालय गवेषक आउ विशेषज्ञ माने जोग देथिले। पुरी श्रीमंदिर कार्यालयन होइतिबार छतीसा निजोग बैठक ती कार्तिक मासे महापुरुंक नीतिकांति बाळभोग सहित अलगा विषय उपरे आलोचना हेछि। इ बाबदे सूचना देकरी जिल्लापाल दिव्यज्योति परिडा कहिछन् आइबा 22 तारीख नु नवंबर मासर 20 तारीख तक भोर 4 बजे द्वारफिटा जाइकरी 5 बजे मंगल आळती आउ सकाळ 6:30 नु 7:30 बजे भितरे राधा दामोदर बेश हेबा। अलगा नीति हेबार उतरु 1 नु 10:30 बजे भितरे स्वतंत्र बाळधूप नीति कराजिबा। इ समयथि श्रद्धालु आउ हबिष्याळी मानकर सुरक्षित दर्शन महाप्रसाद उपलब्धता उपरे बैठक जोर दिया जाइछे। पुरी श्रीमंदिर सेवायत संप्रदाय नेतपिला गुटे स्वतंत्र पर्व भाव पालन करा शारदीय दुर्गापूजा अवसर पंचमी षष्ठी और सप्तमी तिथि सेवायत कुलर कुमारी कन्या पारंपरिक बेश और स्वर्ण अलंकार सजेही मार्कंडीय पुष्करिणी के आसिकी हर पार्वती पूजा करसन। 21 दिन तक बलिपूजा करुवार कन्या शेष केते दिन पारंपरिक बेशति सजेही हेसन। इस समयथि बलिगीत गान करबार परंपरा रही। किशोरीमानक सामर्थ्यर विकास लागि राज्य महिला और शिशु विकास विभाग आउ बिल्ला ग्लोबाल विश्वविद्यालय भितरे आज गुटे बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइजैछि। बुझामणा पत्र अनुसार विश्वविद्यालय भुवनेश्वर कैंपस न राज्यर 50 जन अद्विका किशोरी लागि 6-दिनिया आवासिक तालीम कार्यक्रम आयोजन करा। सुवर्णपुर चलीबार पहला राज्यस्तर 14 बच्छर नु कम बालक विद्यालय समूह फुटबल प्रतियोगिता थी आज 4 शिक्षा जिलार दल जीतिकर आगे जाइछन। आइबा काल गांधी स्टेडियम थिबार सेमीफाइनाल प्रतियोगिता थी संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ और नुआपड़ा दल भितर खेल है। एशियो खेलर पदक विजेता माने 140 कोटी भारतीय गर्वित करिछन कहले प्रधानमंत्री। सल्ला छात्र संसद निर्वाचन आइबा काल हेबा शपथ ग्रहण समारोह। अंत्योदय गृह योजना थी आउ 2,91,000 नु अधिका घर तैयारी करवाके राज्य सरकार निष्पत्ति। आउ पंचायत और पौर निर्वाचन लागि भोटर तालिका तैयार करवाके आइबा 26 तारीख नु मूल हेबा सर्वेक्षण। आजिर आंचलिक खबर इनो शेषला। जुहार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: एही कार्यक्रम रो प्रायोजक हेउछन्ती कृषि ओ कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: आउ ये छेली पादो रे कोनो धान बकची हलानी ना कोनो आ गुजिलो एतनो को बई छोटी ये कोना गोटा गोष्ठी को छोटी सब किछि करि पके बा आउ कोनो देश दुनिया के किछि मानिबार छ।
7: जुहारे जुहारे भाई।
6: जुहारे जुहारे के जिमापा
7: नायमा प्रतिमा।
6: ओहो प्रतिमा दीदी।
7: भाई केते बळु आसि मु बसिछि कोण आजि गोटे हेछि कि भाउजों सहे झगडा
6: मोरो।
7: हां
6: झगडा।
7: हां
6: घरे।
7: हां
6: ये कथा भी तुम कानेरे पड़ी गला तमे।
7: ना ना मो कानेरे पड़ी नी, तमे सियाडू कोण नुणा मंत्री मंत्री आसिलो त मु सुनिली सेति पे पचारले।
6: सब एपट सपट हे जाइछि से कथा छाडो, आमे अलगा कथा कछि अछि जे को पे पचारलो।
7: नहीं नहीं मुँह अभी लेटे व्यस्त है, लेकिन काले को असुविधा है जी कि भाई कहीं आज ये मित्र मन्नर।
6: ओ घरे भी कितनी अकलिया हो बो।
7: आगे।
6: तो मैं चाहिए कौन कर परिवो?
7: किसी कर परिवो नहीं भाई।
6: किसी कर परिवो
7: ना?
6: शे थे तो अकलिया ही बोला।
7: फूनी कौन अकलिया है ला?
6: हाँ। प्रतिमा दीदी।
7: आगे।
6: पार्वण समय।
7: हाँ।
6: जब भी आराधना रो ये हो ची प्रकृष्ट कौन समय। हाँ समय।
7: देवी दुर्गति नासिनी एही सरत समय रे आमो पाखो को आसी की आमो को आस

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पीएम किसान हिताधिकारी जरूरी सूचना योग्य चाषी निकट में सहायता पहुंचाइबा एवं डाटाबेस को स्वच्छ और निर्भुल करने भारत सरकार आरंभ करुछंती एक स्वतंत्र अभियान अक्टोबर 2-31 तारीख पर्यंत राज्यव्यापी चलिबो एही अभियान पीएम किसान योजनार आर्थिक सहायता निरवच्छिन्न भाव पाइबा एग्रीस्टाक पोर्टाल रे कृषक पंजीकरण बैंक खाता सह आधार सीडिंग एवं ई केवाईसी करिबा बाध्यतामूलक एथिपाई पंचायत स्तरीय कृषि कर्मचारी राजस्व अधिकारी किंबा निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई एही प्रक्रिया तुरंत संपूर्ण करंतु कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार
1: आपणकर 4800 रिवार्ड पॉइंट्स आज ही एक्सपायर हे जिवो एबे रिडीम करि नियंतु
2: अरे वाह मोर इते पॉइंट्स केमिति आसला
3: बस एंठी पचारंतु व्हाई रिवार्ड पॉइंट रो नारे आसीथिबा कोनोसी अजणा लिंक रे क्लिक करबा पूर्वरु टिके भाबंतु गोटिए व्हाई आपणकु ठकेइरु बंचाई पारे सबुबेले पचारंतु WHY कहउचंती SBI रो कॅप्टन व्हाई आपणकर साइबर रक्षक
4: पुरातन रचनारु परवर्ती भक्ति तोडी कंठदान करछंती छाया गांगुली।

अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा ये पूरे देश की सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, कहा लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की महिला डबल्स जोड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराकर श्रृंखला बराबर की।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। जापान के आइची नागोया में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल रहे। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का एशियन गेम्स हमारे लिए कई मायनों में यादगार रहा।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और इतना ही नहीं, अपना ही रिकॉर्ड दोहरा दिया है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड और जहां पंच वहां परमेश्वर, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल, 1982 के बाद पहली बार मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
0: प्रधानमंत्री ने इसे देश के करोड़ों नागरिकों की सफलता बताते हुए कहा कि आप सभी खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है। श्री मोदी ने महिला खिलाड़ियों की भी सराहना की।
1: मैं हमारी बेटियों की खास तौर पर सराहना करना चाहता हूँ। भारत ने जो 85 मेडल जीते हैं, उनमें से 38 मेडल हमारी विमेन एथलीट्स ने जीते हैं और इनमें 11 गोल्ड मेडल भी शामिल है। और ये मेडल केवल एक संख्या नहीं है, ये नए भारत की एक सशक्त तस्वीर है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खेलो इंडिया का विस्तार करने और खेल महासंघों को मजबूत करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल के इकोसिस्टम में काफी बदलाव आया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में आई पारदर्शिता के कारण युवा खिलाड़ियों को प्राप्त अवसर मिल रहे हैं।
2: पिछले कुछ वर्षों में देश में खेलों को लेकर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बदलाव आया है, अवसर बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज सरकार, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक साथ मिलकर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स विकसित भारत का एक मेजर पिलर बन चुका है।
0: खेल मंत्री ने आज राष्ट्रीय खेल महासंघों से भारत के खेल प्रदर्शन के लिए और अधिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। कई राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने भारत की खेल उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर मांडविया ने इस बात पर बल दिया कि भारत को केवल कुछ पदक विजेताओं पर निर्भर रहने के बजाय चैंपियनों की एक निरंतर श्रृंखला तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने

0: राष्ट्रीय खेल महासंघों की बैठक में एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: और अब बात कुश्ती पर। अमेरिका के लास वेगास में विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में विश्वजीत को जॉर्जिया के कोबा कारिमिदसे से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में भारत के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। अंडर 23 विश्व स्तर पर दो बार कांस्य पदक जीत चुके मोरे पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन फाइनल के आखिरी पलों में जॉर्जिया के कोबा कारुमिदजे से 12-13 से हार गए। मोरे इस चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र ग्रीको रोमन पहलवान हैं। उन्होंने 3 कड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये पदक देश के नाम किया। मोरे ने मेक्सिको के इसाक मारिन माटा को 10-8 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की, जिससे क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ईरान के अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन आर्मिन शमसी पौर से हुआ। शमसी पौर को मोरे ने 8-1 से हराया। रूस के मलिक गिगेव के खिलाफ सेमीफाइनल भी काफी रोमांचक रहा। इसमें दोनों पहलवानों को चैलेंज का फायदा मिला। अंत में मोरे ने 6-4 से जीत दर्ज की। मोरे फाइनल में इस लक्ष्य के साथ उतरे थे कि वो इस चैंपियनशिप को ग्रीको रोमन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बनेंगे। हालांकि वो फाइनल में जॉर्जिया के कोबा कारुमिदजे से हार गए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात मुक्केबाजी पर। 18 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी टीम कल मोंटेनेग्रो के लिए रवाना हुई। भारतीय टीम 18 अक्टूबर से विश्व अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने सोनी यादव।
4: भारतीय टीम का उद्देश्य वर्ल्ड अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के दूसरे एडिशन में सभी वेट कैटेगरी में पदक जीतना है। 2 साल पहले अमेरिका में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप के पहले एडिशन में भारत ने कुल 17 पदक जीते थे, जिनमें 4 स्वर्ण, 8 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। भारत इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। दूसरे एडिशन के लिए भारतीय टीम में इस साल की शुरुआत में जकार्ता में हुई एशियन अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी और दूसरी वेट कैटेगरी में हुए सिलेक्शन ट्रायल के विजेता भी शामिल हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मोंटेनेग्रो जाने वाली हमारी टीम बहुत मजबूत है और स्क्वाड का लगभग हर खिलाड़ी पूरे साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारत ने एशियन अंडर 19 चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विशेष। बेहद ही अहम और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। दोनों ही वर्ग में कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं?
5: प्रशांत, महिला कैटेगरी में टीम की अगुवाई एशियन अंडर 19 गोल्ड मेडलिस्ट प्राची करेंगी। साथ ही सिल्वर मेडलिस्ट जयश्री देवी, चिरोम चाहत, अंशिका मेघा और प्राची टोकस भी शामिल रहेंगी। अगर पुरुष दल की बात करें तो एशियन अंडर 19 सिल्वर मेडलिस्ट आदित्य और ध्रुव के साथ अनुभवी मौसम सुहाग भी टीम में शामिल हैं।
0: विशेष प्रतियोगिता में इस बार दोनों ही वर्गों में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है?
5: प्रशांत, अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो हिमांशी 48 किलोग्राम, जयश्री देवी 54 किलोग्राम, प्राची 57 किलोग्राम, चाहत 60 किलोग्राम, हर्षिका 65 किलोग्राम, लक्षु 70 किलोग्राम, अंशिका 75 किलोग्राम, मेघा श्योकंद 80 किलोग्राम और प्राची टोकस को हैवी वेट कैटेगरी में मौका मिला है। वहीं पुरुष वर्ग में अमन देव 50 किलोग्राम, आदित्य 55, शिवम 60, मौसम सुहाग 65, प्रशांत 70, लोकेश 80, त्रिदेव 85, ध्रुव 90 और क्रिश को हैवी वेट कैटेगरी में मौका मिला है।
0: तो उम्मीद करें कि इस टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम

0: अपना परचम लहराए। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA ने सीनियर महिला T20 ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए आज 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने सोनी यादव को कप्तान और श्वेता शहरावत को उप कप्तान नियुक्त किया है। ये प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक राउंड रॉबिन और नॉकआउट प्रारूप में खेली जाएगी। रेलवे ने सबसे अधिक 11 बार प्रतियोगिता का खिताब जीता है। 2026-27 सीजन में 37 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें एलीट और प्लेट के अंतर्गत 5 समूहों में बांटा गया है। महाराष्ट्र पिछले सीजन में पहला खिताब जीतकर वर्तमान चैंपियन है। इससे पहले DDCA ने कल 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन के लिए दिल्ली महिला अंडर 15 टीम के ओपन चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए। खिलाड़ियों को 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शशांक, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 223 रन पर सिमट गई। 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। विशेष, पूरे मैच का हाल कैसा रहा कल का?
2: प्रशांत, अगर कल मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन ये निर्णय उनके लिए बहुत ही खराब साबित हुआ क्योंकि कप्तान शे होप ने 50 गेंदों पर 102 रन की शानदार पारी खेली। वहीं ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड ने अंतिम ओवरों में 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर पूरा समीकरण बदल दिया, जिससे भारतीय टीम को 248 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय टीम चेज नहीं कर पाई।
0: अगर हम पूरी श्रृंखला की बात करें तो लगातार पूरी श्रृंखला में गेंदबाजों ने निराश किया। कल उनका प्रदर्शन कैसा रहा?
2: बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा प्रशांत, क्योंकि मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी तीनों ने ही 13 की इकोनॉमी से रन दिए। सिर्फ अर्शदीप सिंह ही थे इन तीनों गेंदबाजों में जिन्होंने एक विकेट लिया। वहीं प्रिंस यादव की बात करें तो उन्होंने सदी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, जहां 4 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट लेकर। श्रृंखला में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि पांचवें मुकाबले में किसी नई रणनीति के साथ वापसी करते हैं।
0: टारगेट कोई भी हो, विशेष जो बल्लेबाजी क्रम है, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स हो या उससे पहले भी, हम 2 बार विश्व कप जीत चुके हैं और बैक टू बैक हमने एशियन गेम्स भी जीता है। यह दर्शाता है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कल कोई भी टारगेट रहा हो भारतीय टीम के सामने, हम ऐसा मान रहे थे कि बल्लेबाज उसे चेस कर देंगे, तो कल कैसा उन्होंने किया है बल्लेबाजी में प्रदर्शन?
2: बल्लेबाजी भारतीय टीम की हमेशा से ही डोमिनेटिंग रही है और पिछले कुछ समय में अपना लोहा मनवा चुकी है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई, वहीं नीतीश रेड्डी और तिलक वर्मा ने बीच के ओवरों में पारी को संभालने की कोशिश करी। भारतीय गेंदबाजों से जो चूक हुई थी कि जो 18 रन एक्स्ट्रा दिए थे, शायद वही एक बड़ा अंतर समझ में आया जहां भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।
0: अब अंतिम और निर्णायक मुकाबले में किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी, क्योंकि श्रृंखला दाव पर है? विशेष,
2: निश्चित तौर पर गेंदबाजों को बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, जहां मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे और अक्षर पटेल और नमन धीर को स्पिन गेंदबाजी में काफी कुछ महत्वपूर्ण साबित करना पड़ेगा।
0: तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 अक्टूबर को कौन सी टीम ये श्रृंखला अपने नाम करती है। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की महिला डबल्स जोड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। संक्षेप में बताइए विशेष कि क्या कुछ रहा अलग अलग वर्गों का हाल आज?
2: प्रशांत, पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत अलेक्स लेनियर के खिलाफ पहला सेट उन्होंने 21-11 से जीता, लेकिन अगले 2 सेट 21-15 और 21-15 से हार कर बाहर हो गए। वहीं वुमेन सिंगल्स में अश्मिता चालिहा जापान की अकाने यामागुची से 21-18 और 21-10 से हार गई। तन्वी शर्मा का मुकाबला अभी कुछ ही देर में खेला जाएगा।
0: और अब सभी प्रशंसकों की निगाहें महिला डबल्स जोड़ी पर होंगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता।

0: हटा। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित यह उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
4: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन सीकिंग द

0: cooperation of the public in voluntary giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
1: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
2: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं, तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
1: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
4: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
3: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
3: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
6: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साय 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
3: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre.

0: और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है, जिससे किसानों की आय भी सुनिश्चित होती है। लेकिन सरकार ने बीते वर्षों में सीमित फसलों से हटाकर कई महत्वपूर्ण अन्य फसलों पर भी फोकस करते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी की गारंटी दी है, और इससे देश भर में जो फसलों का विविधीकरण है या दूसरी फसलों की ओर किसानों का जो रुख है वो बढ़ा है, खासतौर पर तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर। तो आज हम कार्यक्रम में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर अन्य फसलों पर और फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है, वो कैसे हमारे देश में खेती के एक नए प्रारूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण है, और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों को लेकर विभिन्न फसलों में एमएसपी की घोषणा की है, उस पर भी आज हम विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: हम कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही में जो रबी फसलों को लेकर एमएसपी को लेकर घोषणा हुई है, मंजूरी हुई है, उस पर ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे दो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें जिनकी हम चर्चा करें, जिस पर एमएसपी की एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने इस मंत्रिमंडल के फैसले में देखी है, एक तो सैफलावर जिसे कुसुम कहते हैं हम, इसमें प्रति क्विंटल 675 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, और इसी तरह से सरसों पर भी 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो इतनी अच्छी बढ़ोतरी सैफ्लावर और सरसों जैसी फसलों को लेकर सरकार ने दी है, आप कैसे देखते हैं इस मंजूरी को, और खास तौर पर जो हमारे देश में फसलों के डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण को लेकर ये किस तरह से अहम फैसला है?
1: हर साल भारत सरकार 22 फसलों की एमएसपी अनाउंस करती है।
0: जी,
1: इसमें 14 खरीफ की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं, और जूट और कोपरा की भी एमएसपी अनाउंस होती है। और उसके बाद से जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो खरीदारी करती है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जो अनाज और मोटे अनाज है उसकी खरीदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और इसमें राज्य की एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, और दलहन और तिलहन की खरीदारी एक हमारी स्कीम है पीएम आशा स्कीम, उसके अंतर्गत किया जाता है, और इसमें खरीदारी करने वाली एजेंसी है वो नैफेड और एनसीसीएफ है। और हर साल इन सारी खरीदारी से जो किसान के खाते में भुगतान होता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, और उससे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होते हैं। अभी 30 सितंबर को 6 रबी की फसलों की एमएसपी अनाउंस हुई है, मैं उसका डिटेल बता देता हूं, जिसमें गेहूं की एमएसपी अब 2610 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 25 रुपए ज्यादा है। बार्ली, जौ, इसकी एमएसपी अब 2286 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 136 रुपए ज्यादा है। ग्राम चना, इसकी एमएसपी अब 5958 रुपए कर दी गई है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 83 रुपए की वृद्धि की गई है। मसूर की एमएसपी अब 7390 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 390 रुपए ज्यादा है। मस्टर्ड, सरसों, इसकी एमएसपी अब 6613 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 413 रुपए ज्यादा है। और सफ्लावर कुसुम की एमएसपी अब 7215 रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल की तुलना में 675 रुपए ज्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो दलहन और तिलहन की एमएसपी है वो ज्यादा रखी गई है, तो इससे जो विविधीकरण जैसा आपने जिक्र किया डाइवर्सिफिकेशन में को प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिलेगी।
0: तो आपने जैसा कि विभिन्न फसलों के बारे में बताया कि किन किन फसलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की है, दालों का ही अगर हम जिक्र करें तो सरकार का फोकस है कि जो दालों का उत्पादन है वो देश में बढ़े और जो हम आयात पर हमारी निर्भरता है वो हमारी कम हो। मसूर की दाल का आपने जिक्र किया, 390 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस बार, और अगर हम देखें तो मसूर की दाल पर अब एमएसपी 92% तक एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है, यानी जो हमारा 50% तक से ज्यादा का लक्ष्य था उससे लगभग 42% ये ज्यादा है। कैसे आप देखते हैं कि अब दालों की अपनी आत्मनिर्भरता को हम और मजबूत कर रहे हैं और किसान भी इसमें रुझान दिखा रहे हैं उत्पादन में, कितना ये जरूरी है?
1: देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पल्सेज हैं, दाल हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हमारे देश में ही होता है।
0: बिल्कुल,
1: सबसे ज्यादा खपत भी हमारे देश में ही होता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा साधन दाल है और खासतौर पर एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है,
1: और सबसे ज्यादा इम्पोर्ट भी हम ही लोग करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और इसके लिए आप देख सकते हैं, एक तो एमएसपी का अधिक रखना दालों का बहुत बड़ा इसमें योगदान मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक दलहन की उत्पादन करें, और इसके अलावा भारत सरकार भी एक दलहन मिशन चला रही है, जिसके अंतर्गत जो तीन तूर, उड़द और मसूर है, इसकी खरीदारी अब 100% भारत

0: ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम। रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: नमस्कार श्रोताओं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जिसे हिंदी में कहें न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में आप सभी अवगत होंगे और खासतौर पर जो हमारे किसान श्रोता हमें सुन रहे हैं वो तो इससे पूरी तरह से परिचित ही हैं कि जो खेतों में फसल की पैदावार होती है, जब वो पूरी तरह से फसल बनकर तैयार होती है तो उसका एक मूल्य की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है।

0: सरकार करेगी, नैफेड करेगी। तो इन सारे बढ़ी हुई एमएसपी और जो दलहन मिशन है, इससे पल्सेज को प्रमोट करने में काफी मदद मिलती है और इससे हमें उम्मीद है कि किसान भाई भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा देश भी इसमें आत्मनिर्भर होगा और किसान को भी अपनी फसल का उचित लाभ मिलेगा।
1: क्योंकि गेहूं जो ऐसी फसल है भारत की, हमारी कहें तो भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है, और आप किसानों को गेहूं की जो लागत है उसका रिटर्न अगर हम देखें तो 106% के आसपास अब मिल रहा है
0: जी।
1: तो गेहूं किस तरह से भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है और सरकार के जो प्रोत्साहन लगातार हैं किसानों को लेकर, एक पारदर्शिता है, उससे देश की खाद्य सुरक्षा और कैसे मजबूत हो रही है?
0: जैसा आपने बताया कि जो गेहूं और चावल है ये हमारा मुख्य भोजन का में हम लोग खाते हैं और इस साल जो मार्जिन रखा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो 106% का, जैसा अभी आपने बताया, और पिछले साल भी आप देखें तो 109% का इसमें मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रखा गया था। तो लगातार सरकार वीट को भी प्राथमिकता दे रही है और उसको अधिक से अधिक इसमें किसान भाई को हमारा लाभ मिले उसका भी प्रयास रहता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। इस प्रोत्साहन का असर ये है कि पिछले साल 2025-26 में जो हमारी खरीदारी हुई है 350 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हुई है
1: जी,
0: और उसके पिछले साल 2024-25 में लगभग 300 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी। और इसकी वजह से जो हमें फूड मिनिस्ट्री ने बताया है कि 1 अगस्त 2026 तक जो हमारा गेहूं का स्टॉक था वो 505 लाख मैट्रिक टन था जो कि अब तक हाईएस्ट है।
1: बिल्कुल।
0: तो निश्चित तौर पे जो एमएसपी अनाउंस हुई है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे हमारी एमएसपी से किसान भाई उसमें अधिक से अधिक किस फसल को ग्रो कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे देश की फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो रही है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी गेहूं की बड़ी मात्रा है, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: अब हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे चने और जौ की फसलों पर बढ़ी एमएसपी को लेकर, क्योंकि सरकार का भी फोकस है जो हमारी मिलेट्स हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, उसमें जौ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जौ की अगर हम बात करें तो 136 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और चने में 83 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, जो कि हमारे खाने पीने में बड़े महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इनकी मांग को और किसान भी इन फसलों को लेकर, उपजाने को लेकर प्रोत्साहित हो, कितना जरूरी है इन फसलों पर एमएसपी का बढ़ना?
0: देखिए, मतलब जैसा आपने बताया भी और सरकार दलहन को प्रोत्साहित तो कर ही रही है, उसके अलावा जो फसलें जिसका उत्पादन कम होता है उसको भी एमएसपी के माध्यम से उसको बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। जैसे दलहन के लिए अभी मैंने बताया कि दलहन मिशन चल रहा है और उसकी एमएसपी भी अधिक रखी गई है बाकी फसलों की तुलना में। इसकी वजह से जैसे आपने चने का जिक्र किया तो इससे प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। मैं जस्ट आपको आंकड़े बताऊं, 2024-25 में जो चने का प्रोडक्शन 111 लाख मैट्रिक टन हुआ था जो 2025-26 में बढ़कर 125 लाख मैट्रिक टन हो गया है। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, एमएसपी अनाउंस होती है जो, और प्रोत्साहन के जो हमारे स्कीम्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे पल्सेज मिशन है, इससे दलहन की प्रोडक्शन बढ़ाने में निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर उसका असर पड़ रहा है। जैसे आपने बार्ली का जिक्र किया तो बार्ली में हमारा जितना रिक्वायरमेंट है देश में उतना उत्पादन नहीं होता है
1: जी।
0: हमारी इम्पोर्ट पे निर्भरता है और इस निर्भरता को कम करने का एकमात्र माध्यम यह है कि आप अधिक से अधिक उस फसल को प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में बार्ली का एमएसपी 136 रुपये बढ़ाया गया है जो 58% मार्जिन के साथ फिक्स किया गया है।
1: जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो हमें 2018-19 का केंद्रीय बजट की सरकार की वो प्रतिबद्धता याद आती है, जब सरकार ने ये तय किया था कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो फसलों का 1.5 गुना स्वीकृत मंजूर होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो सरकार की जो ये प्रतिबद्धता थी और उसको लगातार सरकार ने पूरा भी किया है, आप कैसे देखते हैं सरकार की इस कमिटमेंट को? और जिस तरह से हमेशा ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में हमने देखा है कि समय समय पर एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की जाती रही है समय की मांग के हिसाब से, और साथ में जो किसानों की आय है उसको लेकर कैसे इससे स्टेबिलिटी आई है, स्थायित्व आया है कि लगातार किसानों को उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है उसको न सिर्फ बरकरार रखा गया है बल्कि बढ़ाया भी गया है।
0: जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था 2018-19 में, 1 फरवरी 2018 को अनाउंसमेंट हुआ था कि एमएसपी अब जो फिक्स होगी वो कम से कम लागत मूल्य पर 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स होगी। उसके बाद से जितनी एमएसपी फिक्स हुई है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की गई है। मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं

0: कि
1: ये जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी का काफी जिक्र होता है,
0: हाँ हाँ,
1: उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि भाई जो एमएसपी फिक्स होती है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ होनी चाहिए,
0: होनी चाहिए।
1: तो उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है और इससे आप देख सकते हैं कि लगातार उसके बाद से एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है और प्रोक्योरमेंट खरीदारी भी बढ़ी है और जो एमएसपी का पैसा किसान के खाते में जाता है उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इससे किसान की इनकम को बढ़ाने में काफी मदद मिली है।
0: बिल्कुल। और जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये फैसले आए हैं रबी फसलों को लेकर, तो जैसे किसान अपनी हमेशा योजना तैयार करते हैं कि कौन सी फसल की बुआई करनी है, तो अब रबी फसलों को लेकर ये जो पूरा आंकड़ा हमारे सामने आया है कि किन फसलों पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसानों को कितनी सहायता होती है ऐसे निर्णयों से कि अब रबी फसलों की बुआई से पहले वो अपनी योजना बना सकें।
1: भारत सरकार हर साल 4 बार एमएसपी अनाउंस करती है, एक खरीफ की, दूसरी रबी की, उसके बाद कोपरा और जूट की एमएसपी अनाउंस होती है। जो एमएसपी अनाउंस होती है उस सीजन से पहले की जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि खरीफ की एमएसपी इस साल मई में अनाउंस हो गई थी, खरीफ सीजन से पहले। रबी की एमएसपी 30 सितंबर को अनाउंस हो गई है। हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर से रबी स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जो सरकार अनाउंस करती है वो सीजन स्टार्ट होने से पहले करती है। इससे क्या होता है कि किसान भाई हमारे अपने फसल के बारे में सही फैसला ले पाते हैं कि किस फसल को हम ज्यादा प्राथमिकता दें, किसी को कम दें, किसको प्राथमिकता देने से उनको अधिक लाभ मिलेगा। इससे किसान को अपना डिसीजन लेने में काफी मदद मिलती है।
0: अब जैसे हम एमएसपी की ही बात करें तो जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो खाद्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेकर लगातार उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है कभी कभार महंगाई की वजह से या दूसरी कई वजहों से, चाहे वो आटा हो, दाल हो, लेकिन ये कितना जरूरी है कि किसानों को पहले ही उसकी गारंटी मिल जाए उसकी फसल की। जैसे गेहूं को लेकर ही हम अगर उदाहरण लें तो गेहूं की 25 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसान किस तरह से आश्वस्त रहता है अपनी फसल के उत्पादन को लेकर एमएसपी की वजह से कि उसको उसके फसल का मूल्य पहले ही मिल रहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सकें।
1: जैसा कि मैंने बताया कि एमएसपी सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस हो जाता है, तो उसमें किसान अपनी फसल के बारे में उचित फैसला पहले ही कर लेते हैं। जहां तक गेहूं का आपने जिक्र किया है, तो गेहूं का प्रोडक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा है और इससे इसमें हमारी खरीदारी भी काफी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो किसान को अपनी फसल का, खासकर गेहूं का, उचित मूल्य इनको मिल रहा है और फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश की इंश्योर हो रही है। और एक और चीज आपने पूछा कि इससे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी अनाउंस होती है मार्केट में एक बेंचमार्क प्राइस फिक्स हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: उससे क्या होता है कि आप देखेंगे इन सारी जो एमएसपी की फसलें हैं उनका मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास ही रहता है। अभी हम लोगों ने गेहूं और मैं पैडी की बात करूं, उसमें धान की बात करूं, इसका पिछले 10 साल का हम लोगों ने डेटा को एनालाइज किया था और हम लोगों ने देखा कि जो एमएसपी है उसी के आसपास ही उसका मार्केट प्राइस भी है। बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो इससे क्या होता है जो एमएसपी अनाउंस होती है और खास करके गेहूं और धान की, तो इसमें मार्केट प्राइस भी स्टेबलाइज होता है।
0: अब सरकार का जैसे कि आपने भी बताया कि ध्यान फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर है, गेहूं चावल के अलावा तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर एमएसपी पर सरकार का ध्यान है और उनके प्रोडक्शन और उनके प्रोत्साहन पर सरकार फोकस कर रही है। तो हमारे देश में जो एक क्रॉप साइकिल है या हिंदी में कहें फसल चक्र है या जो हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता है, तो उसकी बेहतरी के लिए कितना जरूरी है कि जो दूसरी फसलें हैं उनकी तरफ किसान रुख करें और एक वैकल्पिक फसलों के तौर पर अपने खेतों में उनका उनको उपजाएं, तो कितना जरूरी है तिलहन दलहन जैसी फसलों के उत्पादन को लेकर ये प्रोत्साहन?
1: निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है कि आप अपने खेत में एक ही फसल को आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, उगाएंगे, तो उसका असर उसकी जमीन की उर्वरकता पर भी पड़ता है, वहां पर फर्टिलिटी भी काफी उसकी डिस्टर्ब होती है। तो एक उसमें चक्र बना रहना चाहिए जैसे कि आपने जिक्र किया, और ये चक्र हमारे देश में नेचुरली बन रहा है। आप देख लें कि गेहूं और धान के अलावा जो एमएसपी बढ़ रही है हमारी दलहन और तिलहन की, इससे किसान भाई को प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो दलहन तिलहन की खेती भी वो ज्यादा से ज्यादा करें और वो कर भी रहे हैं। और इन दो फसलों दलहन और तिलहन की हमारी इम्पोर्ट पर निर्भरता भी है। इससे क्या होता है कि जो अभी आपने जिक्र किया कि उसकी फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, तो जब अलग अलग फसल हमारे किसान भाई ग्रो करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बैलेंस बना रहेगा। जो बार बार अपना एक जिक्र होता है कि भाई उसका ऐसा कुछ ना हो कि ऐसी फसल ही आप ग्रो करते जाएं कि उसकी फर्टिलिटी ही बिल्कुल खराब हो जाए, तो जब इस चक्र बना रहेगा तो फर्टिलिटी

0: शक्ति भी उसकी बैलेंस रहेगी।
1: अगर हम जो सरकारी खरीद की बात करें गेहूं की फसल को खासतौर पर अगर हम लें, तो हमारे पास बड़े बेहतरीन आंकड़े हैं। जैसे 2004 से 14 के बीच में अगर गेहूं की सरकारी खरीद को हम देखें, तो ये जो लगभग पहले इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% से ज्यादा है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो सरकारी खरीद बढ़ती है जब किसी फसल की, तो उसमें सरकार का जो प्रोत्साहन दिया जाता है खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उसकी बढ़ोतरी का, वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है?
0: देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में खरीदारी में क्या असर पड़ा, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में गेहूं की खरीदारी 22 करोड़ 54 लाख मैट्रिक टन हुई थी, जो 2014 से 26 के बीच में बढ़ करके 37 करोड़ 15 लाख मैट्रिक टन हो गया है। दलहन की बात करें तो 4 से 14 के बीच में 6,29,000 मैट्रिक टन था, जो बढ़ करके 2 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन हो गया है, 35 गुने की वृद्धि हुई है। इससे आप साफ देख सकते हैं कि जो खरीदारी है हमारी दलहन की पिछले 10 सालों में काफी बढ़ी है।
1: बिल्कुल।
0: और तिलहन की बात करें तो 2004 से 14 के बीच में 47,75,000 मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी, और 14 से 26 के बीच में 1,58,00,000 मैट्रिक टन की हुई है, 3.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो तिलहन का में भी खरीदारी हमारी काफी हुई है। तो इन दोनों फसलों को, दलहन और तिलहन को, हमारी एमएसपी के माध्यम से काफी बढ़ावा मिल रहा है और खरीदारी भी हो रही है।
1: बिल्कुल। तो अगर किसानों के फसलों के उपजाने के को लेकर उनके कॉन्फिडेंस को देखें, तो वो कितना बढ़ा है इससे, क्योंकि आपने जैसा कि आंकड़े भी शेयर किए, और जब आंकड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों को उसका सीधा लाभ भी उनके आर्थिक मोर्चे पर भी होता ही है। तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब किसानों का इन अलग अलग तरह की फसलों को उपजाने में?
0: देखिए, इसमें कुछ आंकड़े जो अभी आपके पास हमने रखे दलहन और तिलहन की, तो काफी खरीदारी, इससे साफ साफ दिख रहा है कि इन फसलों की तरफ हमारे किसान भाई का झुकाव भी हो रहा है और इसकी सरकार खरीदारी भी कर रही है। जहां तक विश्वास की बात करें तो मेरा अपना मानना है कि एमएसपी अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा किसान भी करते हैं, और सरकार की भी प्राथमिकता रहती है कि वो सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दें, जिससे किसान को हमारी एमएसपी के बारे में जानकारी रहे और अपने फसलों के बारे में सही वो डिसीजन ले सकें। निश्चित तौर पे किसान का भरोसा तो एमएसपी पर है, और प्रोक्योरमेंट भी काफी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है।
1: तो अगर हम किसानों के आर्थिक लाभ की बात कर ही रहे हैं, तो गेहूं किसानों की अगर मैं बात करूं, आपने भी एक आंकड़ा शेयर किया था कि कैसे 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक इजाफा हुआ है किसानों, गेहूं किसानों की जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, उसका आर्थिक लाभ जो किसानों को मिला है। तो आंकड़ा ये है कि 256,00,000 करोड़ रुपए से लेकर ये बढ़कर 731,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में, यानी हम कहें तो दोगुने से भी ज्यादा का एक आर्थिक लाभ किसानों को सीधा मिला है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा आंकड़ा है?
0: जो दो आंकड़े आपने रखे हैं, इनफैक्ट पहला आंकड़ा आपने 2004 से 14 के बीच का था, और दूसरा आंकड़ा 2014 से 26 के बीच का था, तो इसमें जो वृद्धि हुई है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो 3 गुने की वृद्धि हुई है। तो 3 गुना लाभ हमारे किसान को मिला है और ये उनके अकाउंट में गया है, तो उनके इनकम को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। इसी संदर्भ में मैं आपको दो और आंकड़े बताना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में दलहन खरीदारी में 1900 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाते में हुआ था, और वहीं 14 से 26 के बीच में देखें तो 1,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, और ये 65 गुने ज्यादा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दलहन की जो खरीदारी हुई वो भी ज्यादा हुई है, और क्योंकि एमएसपी लगातार बढ़ रही है इसलिए उसका लाभ भी हमारे किसान भाई को अच्छा मिल रहा है। इसी संदर्भ में मैं तिलहन का जिक्र करूं,
1: बिल्कुल,
0: तो 2004 से 14 के बीच में 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान भाई को हुआ था, और वहीं 14 से 26 के बीच में 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो 9.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो ये सारे जो भुगतान हो रहे हैं इससे किसान को लाभ मिल रहा है, और उससे किसान की इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है।
1: बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर गेहूं, चावल, ये गेहूं के अलावा जो 6 बड़ी रबी फसलें हैं, इनमें भी आंकड़े को हम देखें तो 265,00,000 से बढ़कर 831,00,000 का ये हमारे पास आंकड़ा है। ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं, ये किस तरह से आप इन्हें देखते हैं, और कैसे जो एक पूरा तंत्र है, कृषि तंत्र है, उसमें जो खासतौर पर ये बात सरकार की ओर से कही जाती रही है कि किसानों को जो आर्थिक आय है या उनका जो इनकम है, उसमें किसानों को प्रोत्साहन मिले और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो, तो किस तरह से ये पूरा होता हुआ दिख रहा है और ये लगातार प्रक्रिया जारी है?
0: जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके दो बिंदु हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 2018

0: 2018-19 में जब अनाउंसमेंट हुआ था बजट में कि एमएसपी कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की जाएगी, उसके बाद क्या हुआ है कि एमएसपी कभी भी 50% कब तो फिक्स हुई नहीं है। इससे क्या होता है, एमएसपी में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले क्या था कि कुछ फसलों की 2018-19 से पहले की बात करें तो कुछ फसलों की एमएसपी जो फिक्स होती थी वो लागत मूल्य पर 50% नहीं भी मिलता था। एमएसपी में एक तो लगातार वृद्धि हो रही है और जो खरीदारी हो रही है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये सारे और जो अमाउंट पैसा जा रहा है अकाउंट हमारे किसान के खाते में जा रहा है पहले, अब आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: अभी जो एमएसपी का पैसा है वो किसान के खाते में जा रहा है, वो आधार से लिंक किया हुआ है,
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के,
0: हाँ, डीबीटी के थ्रू जा रहा है। तो इसमें अब बिल्कुल किसान को डायरेक्टली उसका फायदा मिल रहा है। तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
1: एक प्रश्न हम अपने श्रोताओं की समझ के लिए, जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसका तय करने का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या इसका आधार यही है कि जैसे किसानों की लगातार बढ़ती हुई बीज की, खाद की, मशीनरी की या जो मजदूरी या श्रम की लागत है वो जैसे जैसे बढ़ती है तो किसानों को उसी तरह से उस आधार पर उसका लाभ दिया जाता है, तो कैसे तय होता है एमएसपी?
0: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये अभी हम लोगों ने काफी जिक्र किया कि एमएसपी लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ फिक्स की जाती है। तो जो लागत मूल्य है उसमें जो उसके कंपोनेंट है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो किसान उस फसल को उगाने में जो भी खर्च करता है वो सारे खर्च इसमें जोड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो लेबर हायर किया किसान ने, जितना खर्च किया उस फसल को उगाने में उसको काउंट किया जाता है। यदि किसान ने अपना वो लेबर अपने घर से यूज किया और घर के लोगों ने श्रम दिया हुआ है उसका भी इम्प्यूटेड वैल्यू जो अपना लेबर कॉस्ट है वो भी ऐड किया जाता है। यदि मशीनरी किसान ने हायर किया है उसका खर्चा भी ऐड होता है। यदि मशीनरी खुद की है तो उसका खर्चा भी उसमें ऐड होता है। और सीड्स पे जो खर्च हो रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में जो खर्च हो रहा है, फर्टिलाइजर पे खर्च हो रहा है, ये सारे खर्चे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़े जाते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई किसान जमीन लीज पे लिया हुआ है,
1: जी जी,
0: तो उसका खर्चा बहुत आता है।
1: बिल्कुल,
0: तो यदि कोई किसान लीज पर लेकर खेती कर रहा है तो उसमें जो लीज का कॉस्ट होता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है। और इरिगेशन है, बाकी जो कंपोनेंट मैंने बताया वो तो सारे खर्चे जोड़े ही जाते हैं इसमें।
1: और जैसे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी जमीन है तो उसमें से तो अगर ज्यादा फसल की पैदावार होती है तो उसका एक एवरेज कॉस्ट निकल जाता है, लेकिन जो खासतौर पर छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको अगर एमएसपी मिलता है तो उनके लिए कितनी बड़ी एक गारंटी होती है, कैसे उनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन होता है?
0: मैं थोड़ी प्रक्रिया और
1: बिल्कुल
0: बता देता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: कि जो हम लोग इसका आंकड़ा इकट्ठा होता है इसमें हम लोग गांव में जो प्लॉट्स होते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी में प्लॉट्स डिवाइडेड होते हैं जिससे कि डेटा इकट्ठा होता है। पहला कैटेगरी है कि एक हेक्टेयर से कम वाले प्लॉट कौन कौन से हैं, एक से दो हेक्टेयर वाले प्लॉट कौन कौन से हैं और दो हेक्टेयर से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं। तो जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो तीनों कैटेगरी से होते हैं। तो इसमें जो एक हेक्टेयर से कम वाले जो कैटेगरी है इसमें हमारे छोटे किसान में जो खर्च हो रहे हैं वो सारे उसमें काउंट हो जाते हैं। और जो एमएसपी है उसका लाभ हर किसान लेता ही है, जैसा कि आपको हम सबको मालूम है।
1: बिल्कुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब खेती का तरीका है वो एक तकनीकी तौर पर अब अलग होता जा रहा है, उन्नत और स्मार्ट खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर हमें खेती में बहुत सारे उपकरणों की भी जरूरत होती है, तो किसान अपनी लागत को पूरा कर सकें, उपकरणों के खर्च को पूरा कर सकें, ऐसे में लगातार जो उनको प्रोत्साहन है वो एमएसपी के जरिए बढ़ोतरी के रूप में दिया जाता रहा है, वो भी क्या इनमें जोड़ा जाता है उनके खर्च को भी?
0: जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसान जो भी खर्च करते हैं वो सारा कॉस्ट उसमें जोड़ा जाता है। अभी आपने मशीनरी का जिक्र किया, मान ली कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आप उसको हायर करते हैं मार्केट से,
1: बिल्कुल,
0: तो जो आपका हायरिंग कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। मान ली आपके खुद का मशीनरी है उसको आप यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी उसमें ऐड किया जाता है। तो जो भी मशीनरी हमारा किसान यूज करते हैं उसका खर्च इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडेड रहता है।
1: तो अब कार्यक्रम में हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आखिर में हम आपसे यही समझना चाहेंगे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए, जैसे ये फैसला रहा इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का और समय समय पर केंद्रीय कैबिनेट के फसलों के एमएसपी को लेकर फैसले भी आते रहते हैं,

0: से हमारे देश का जो बफर स्टॉक है वो बिल्कुल स्थिर रहे, बढ़ोतरी होती रहे उसमें, और साथ में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होते रहे, किसानों की आय भी लगातार बढ़ती रहे। इन तीनों कंपोनेंट्स के हिसाब से एमएसपी की का ये प्रोत्साहन कितना जरूरी है और सरकार इस ओर कितना ध्यान दे रही है?
1: देखिए, इसमें जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की बात है, इसमें गेहूं और धान में तो हमें कोई इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं
0: बिल्कुल,
1: पड़ती है,
0: उसमें तो आत्मनिर्भर हैं हम पूरी तरह से।
1: और जिसमें हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है दलहन और तिलहन में, उसमें भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एमएसपी में भी लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें जो भुगतान हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और हमारे पल्सेज मिशन भी चल रहे हैं और तिलहन मिशन भी चल रहे हैं, इनके माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे हम लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि भविष्य में हमारे किसान भाई इन सारी फसलों को प्राथमिकता देंगे, इसको अधिक से अधिक इसका उत्पादन करेंगे, और बढ़ी हुई एमएसपी का उनका लाभ मिलेगा, जिससे
0: बिल्कुल
1: उनका इनकम बढ़ाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और देश को भी इन फसलों पे आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।
0: बिल्कुल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में जुड़े। और केंद्रीय कैबिनेट का जो हाल ही में रबी की फसलों को लेकर एमएसपी की जो मंजूरी है, और साथ में किस तरह से लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोत्साहन और बढ़ोतरी के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर दिया जाता रहा है और उसमें लगातार और बढ़ोतरी होती जा रही है, इस पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस चर्चा के माध्यम से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस

0: इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है, उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SIR करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में DCP नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हों जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे इनॉग्यूरेटेड एंड डेडिकेटेड टू द नेशन 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 3,300 करोड़ रुपीस इन लद्दाख थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, द प्राइम मिनिस्टर सेड द डेवलपमेंट ऑफ लद्दाख रिमेन्स अ की प्रायोरिटी फॉर द सेंटर।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varun Astra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed